यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 हजार मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, DTH, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। आज शुक्रवार है, शक सम्मत 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर

0: चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आलू की अगैती खेती के विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम आलू की अगैती खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अगैती आलू की बुआई का समय सितंबर के आखिरी सप्ताह से 15 अक्टूबर तक होता है और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पिछेती आलू की बुआई करते हैं। अगैती आलू की बुआई जो करते हैं उसे लगभग 2 माह में कच्चा ही खोदकर सब्जी के लिए प्रयोग कर लेते हैं। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वह हैं कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी लालिमा और कुफरी बादशाह। इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाए लेकर करके आप इस समय बुआई कर सकते हैं। अगर अगेती या पिछेती दोनों किस्मों की खेती करना हो तो अगेती आलू की बुआई 15 सितंबर के आसपास करके लगभग 2 माह में इसकी कच्ची खुदाई कर लेते हैं और फिर पिछेती आलू बो देते हैं। अब बात आती है इसके लिए मिट्टी के चुनाव एवं उसके तैयारी की। आलू की खेती वैसे तो दोमट मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन सर्वोत्तम होती है उचित जल निकास एवं जीवांश युक्त भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी। इसी में कंदों का विकास विधिवत रूप से होता है। खेत चुनते समय एक बात और ध्यान दें, इसके लिए खेत ऐसी जगह होना चाहिए जो कि एकदम खुला हो, वहाँ सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से खेतों में फैलता हो। अब बुआई के कम 20 दिन पहले 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देते हैं। फिर 8 से 10 बार खेत को गहराई तक जोत कर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। फिर अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से तत्व के रूप में, यानी कि 60 किलोग्राम यूरिया, 220 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 60 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश खेत में मिलाना चाहिए। जब खेत भली प्रकार तैयार हो जाए तो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना लेते हैं और फिर इन्हीं मेड़ों पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एवं 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर शोधित कंदों की बुआई करते हैं। एक एकड़ बीज की बुआई के लिए 10 से 12 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है। बीज का आकार 1 से 2 इंच व्यास का चाहिए तथा इनका औसत वजन 30 से 35 ग्राम का होना चाहिए। फिर इसको उपचारित कर लेते हैं। इसके लिए जिंक मैंगनीज कार्बामेट दवा प्रयोग करते हैं। इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसी घोल में बीज को लगभग आधे घंटे तक डुबोकर फिर साय में फैला देते हैं और फिर बुआई करते हैं। बीज को पारायुक्त रसायन के घोल में भी उपचारित कर सकते हैं। इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी हेतु पर्याप्त होती है। अगर एक एकड़ खेत है तो बीज उपचार हेतु 100 लीटर घोल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जब बुआई हो जाती है तो नंबर आता है फसल की देखभाल की, जिसमें सबसे पहला काम होता है सिंचाई। बीज के जमाव के लिए चूंकि नमी बहुत ही आवश्यक है, अतः जैसे ही 10-15 दिन में बीज का जमाव हो जाए तथा पौधे जमीन के बाहर

0: दिखाई देने लगें तो एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से खेत के सभी पौधे समान रूप से बाहर निकल आते हैं। इसके 10 से 12 दिन बाद एक और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। फिर जब गुड़ाई करने लायक हो जाए तो निकाई गुड़ाई करके शेष 30 किलोग्राम नतजन या 62 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से भुरक कर मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने के 4-5 दिन बाद यानी कि बुआई के लगभग 35 से 40 दिन पर तीसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करते समय यह ध्यान रहे कि मेड़ें अधिकतम आधी ऊंचाई तक ही गीली हों। आलू की फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, अतः शेष सिंचाइयाँ आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगेती आलू की खेती करनी चाहिए।
1: आलू की अगेठी खेती के विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे सर्वशक्तिमान, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हमारे कष्ट हरो।

आपकी कृपा से ही हर विपदा टल जाती है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें हे प्रभु।

मन में जब भी बसाने की बात हो तो प्रभु आप ही हैं जिन्हें हम पल पल याद करते हैं, अपने मन में बसाए रखते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के एक गायक कलाकार थे जगजीत सिंह, अनूप जलोटा और चित्रा सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडेय की है।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 147वीं कड़ी।

जिन दिनों खेड़ा का आंदोलन चल रहा था उन दिनों यूरोप का महायुद्ध भी जारी ही था। वायसराय ने उसके सिलसिले में नेताओं को दिल्ली बुलाया था। मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं भी उसमें हाजिर हूं। मैं बता चुका हूं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मेरी मित्रता थी। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और मैं दिल्ली गया, किंतु इस सभा में सम्मिलित होते समय मेरे मन में एक संकोच था। मुख्य कारण तो ये था कि सभा में अली भाइयों को, लोकमान्य को और दूसरे नेताओं को

निमंत्रित नहीं किया गया था। उस समय अली भाई जेल में थे। उनसे मैं एक दो बार ही मिला था। उनके बारे में सुना बहुत था। उनकी सेवा वृत्ति और बहादुरी की चर्चा सभी कोई करते थे। हकीम साहब के संपर्क में मैं नहीं आया था। स्वर्गीय आचार्य रुद्र और दीनबंधु एंड्रयूज के मुंह से उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। कलकत्ते में हुई मुस्लिम लीग की बैठक के समय श्वेब कुरैशी और बैरिस्टर ख्वाजा से मेरी जान पहचान हुई थी। डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर अब्दुल रहमान के साथ भी जान पहचान हो चुकी थी। मैं सज्जन मुसलमानों की संगति के अवसर ढूंढता रहता था जो पवित्र और देशभक्त माने जाते थे। उनसे जान पहचान करके उनकी

माने जाते थे। उनसे जान पहचान करके उनकी भावना को जानने की तीव्र इच्छा मुझ में रहती थी, इसलिए वे अपने समाज में मुझे जहां कहीं ले जाते वहां बिना किसी आनाकानी के मैं चला जाता था। इस बात को तो मैं दक्षिण अफ्रीका में ही समझ चुका था कि सभी के बीच सच्चा मित्र भाव नहीं है। मैं वहां एक ऐसे भी उपाय को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था जिससे सभी के बीच की अनबन दूर हो। झूठी खुशामद करके अथवा स्वाभिमान खोकर उनको अथवा किसी और को रिझाना मेरे स्वभाव में नहीं था, लेकिन वहीं से मेरे दिल में ये बात जमी हुई थी कि मेरी अहिंसा की कसौटी और उसका विशाल प्रयोग इस एकता के सिलसिले में ही होगा। आज भी मेरी ये राय कायम है, ईश्वर प्रतिक्षण मुझे कसौटी पर कस रहा है, मेरा प्रयोग चालू ही है। इस प्रकार के विचार लेकर मैं बंबई बंदर पर उतरा था, इसलिए मुझे इन दोनों भाइयों से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमारा स्नेह बढ़ता गया। हमारी जान पहचान होने के बाद तुरंत ही अली भाइयों को सरकार ने जीते जी दफना दिया। मौलाना मोहम्मद अली को जब इजाजत मिलती तब वे बैतूल या छिंदवाड़ा जेल से मुझे लंबे लंबे पत्र लिखा करते थे। मैंने उनसे मिलने की इजाजत सरकार से मांगी थी पर वो नहीं मिल सकी थी। अली भाइयों की नजरबंदी के बाद सभी मुझे कलकत्ता की बैठक में ले गए। वहां मुझसे बोलने को कहा गया। मैं बोला। मैंने सभी को समझाया कि अली भाइयों को छुड़ाना उनका धर्म है। इसके बाद वे मुझे अलीगढ़ कॉलेज में भी ले गए थे। वहां मैंने सभी को देश के लिए फकीरी अख्तियार करने की दावत दी। अली भाइयों को छुड़ाने के लिए मैंने सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। उसके निमित्त से इन भाइयों की खिलाफत संबंधी हलचल का अध्ययन किया। सभी के साथ चर्चाएं की। मुझे लगा कि अगर मैं उनको सच्चा मित्र उनका बनना चाहता हूं तो मुझे अली भाइयों को छुड़ाने में और खिलाफत के प्रश्न को न्यायपूर्वक सुलझाने में पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफत का सवाल मेरे लिए सरल था, मुझे उसके स्वतंत्र गुण दोष देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि अगर उसके संबंध में सभी की मांग नीति विरुद्ध न हो तो मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। धर्म के प्रश्न में श्रद्धा सर्वोपरि होती है। यदि एक ही वस्तु के प्रति सबकी एक सी श्रद्धा हो तो संसार में एक ही धर्म रह जाए। मुझे खिलाफत संबंधी मांग नीति विरुद्ध प्रतीत नहीं हुई। यही नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने इस मांग को स्वीकार किया था, इसलिए मुझे तो उनसे वचन का पालन करवाने का भी प्रयत्न करना था। वचन ऐसे स्पष्ट शब्दों में था कि मर्यादित मांग के गुण दोष जांचने का काम केवल अपनी अंतरात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही करना था। चूंकि मैंने खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ दिया था, इसलिए इस संबंध में मित्रों और आलोचकों ने मेरी काफी आलोचना की। उन सब पर विचार करने के बाद मैंने जो राय बनाई और जो मदद दी या दिलाई उसके बारे में मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, न उसमें मुझे कोई सुधार ही करना है। मुझे लगता है कि आज भी ऐसा सवाल उठे तो मेरा व्यवहार पहले की तरह ही होगा। दिल्ली पहुंचते ही दीनबंधु एंड्रयूज ने एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्हीं दिनों इटली और इंग्लैंड के बीच गुप्त संधि होने की जो चर्चा अंग्रेजी अखबारों में छिड़ी थी उसकी बात कहकर दीनबंधु ने मुझसे कहा, यदि इंग्लैंड ने इस प्रकार की गुप्त संधि किसी राष्ट्र के साथ की हो तो आप इस सभा में सहायक की तरह कैसे भाग ले सकते हैं। मैं इन संधियों के विषय में कुछ जानता नहीं था। दीनबंधु का शब्द मेरे लिए पर्याप्त था। इस कारण को निमित्त बनाकर मैंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा कि सभा में सम्मिलित होते हुए मुझे संकोच हो रहा है। उन्होंने मुझे चर्चा के लिए बुलाया उनके साथ और बाद में मिस्टर मेफी के साथ मेरी लंबी चर्चा हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने सभा में सम्मिलित होना स्वीकार किया। थोड़े में वायसराय की दलील ये थी, आप ये तो नहीं मानते कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कुछ करे उसकी जानकारी वायसराय को होनी चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता कि ब्रिटिश सरकार कभी भूल करती ही नहीं, कोई भी ऐसा दावा नहीं करता, किंतु यदि आप स्वीकार करते हैं कि उसका अस्तित्व संसार के लिए कल्याणकारी है, यदि आप ये मानते हैं कि उसके कार्यों से इस देश को कुल मिलाकर कुछ लाभ हुआ है, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि उसकी विपत्ति के समय उससे मदद पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। गुप्त संधि के विषय में आपने समाचार पत्रों में जो देखा है वही मैंने भी देखा है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, ये मैं आपसे विश्वासपूर्वक कह सकता हूं।
अखबारों

मैं कैसी कैसी गप्पे आती हैं ये तो आप जानते ही हैं। क्या अखबारों में आई हुई एक निंदा सूचक बात पर आप ऐसे समय राज्य का त्याग कर सकते हैं? लड़ाई समाप्त होने पर आपको जितने नैतिक प्रश्न उठाने हो उतने उठा सकते हैं और जितनी तकरार करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये दलील नई नहीं थी, लेकिन जिस अवसर पर और जिस रीति से पेश की गई उससे मुझे नई जैसी लगी और मैंने सभा में जाना स्वीकार कर लिया। खिलाफत के बारे में निश्चय हुआ कि मैं वायसराय को पत्र लिखकर भेजूं।

श्रोता, अभी आप गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा, सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ सुन रहे थे। वाचन एवं प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहाँ केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ की आज की कड़ी सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। जापान में आयोजित एशियन गेम्स के शुभारंभ का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8 बजे से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 एवं सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन बसाथी। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में दिन में 12:45 पर आप सुनेंगे एकल तबला वादन। कलाकार होंगे रामजी मिश्रा। स्वास्थ्य पत्रिका का प्रसारण होगा रात 10 बजे से। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई खरपत राम और साथी के गाय लोकगीत के अलावा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला का प्रसारण भी सुनेंगे। खरपत राम व साथी के गाय लोकगीत सुबह 9:50 एवं दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुने जा सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी, शाम में गजल, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे योगेश कुमार मिश्रा। एक ही फिल्म से एक ही कलाकार कार्यक्रम दिन में 2:30 पर प्रसारित होगा। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने दिन में 1:15 पर गीत संगीत के अलावा अन्य कार्यक्रम भी सुनेंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दिन में 12 बजे से प्रसारित होगा। एक ही कलाकार कार्यक्रम दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे। परमाइशी गीत एक्सप्रेस जो होगा आज व्हाट्सएप पर आधारित, प्रसारण समय रहेगा सुबह 11 बजे से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10 बजे से। फिल्म संगीत के अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण समय हम आपको बताएं। रात 8:30 पर रसमाधुरी, शाम 7:31 पर रसरंग, शाम 7 बजे, शाम 6:10, शाम 5 बजे और मधुरिमा कार्यक्रम में सुबह 8:45 पर भी फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7 बजे से। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आप सुनेंगे जापान में आयोजित एशियन गेम्स के शुभारंभ का प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा रात्रि 8 बजे से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 एवं सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन बसाथी। स्वास्थ्य पत्रिका का समय रहेगा रात 10 बजे का। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय रहेगा रात 9:30 का। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55।

0: विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्तविंशत्यधिकैकशत धावनांकै पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

मॉर्निंग बनारस। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, मैं स्तुति हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट शो लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। तो बनारस कहते हैं ना, पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती। कभी कभी बस एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा मोमेंट और हमारा पूरा मूड बदल जाता है। ना कोई बड़ी अचीवमेंट, ना कोई बड़ी खुशी, बस सुबह का कोई छोटा सा खूबसूरत पल हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आता है और वही मुस्कान जाने अनजाने पूरे दिन हमारे साथ चलती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है बनारस कि सुबह आँख खुलते ही दिमाग में पूरी लिस्ट चलने लगती है। आज ये करना है, वो काम पूरा करना है। देखिए भाई, किसी चीज के लिए अपने एम के लिए पैशनेट होना अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच ना कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, सुबह खुद में एक छोटा सा खूबसूरत हिस्सा है। जी हाँ, कभी वो पल होता है जब हम अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं और बाहर की फ्रेश हवा महसूस करते हैं। कभी कोई पसंदीदा गाना अचानक सुबह के मूड को बदल देता है और कभी किसी अपने की छोटी सी बात चेहरे पर मुस्कान ले आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश होने के लिए कोई खास मौका चाहिए, लेकिन बनारस खुशी किसी ओकेजन की मोहताज नहीं होती। हमारी सुबह में ऐसे कई छोटे छोटे मोमेंट छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर नोटिस नहीं करते, इसलिए शायद कभी कभी हमें अपनी सुबह को थोड़ा स्लो करना चाहिए। और यकीन मानिए, सुबह पॉजिटिव हो ना तो दिन हल्का ही लगता है। हर सुबह प्रोडक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी सुबह का कुछ समय सिर्फ अपने लिए होना भी जरूरी है। कुछ देर अपने पसंद का कोई म्यूजिक सुन लीजिए, अकेले यूं ही बैठ लेना, परिवार के साथ वक्त बिता लेना, यही छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरीज में से एक है। इसलिए हर सुबह खुशनुमा बनाएं, दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। और कोई कुछ बोले जो आपको अच्छा ना लगे तो कभी कभी इग्नोर कर देना भी समझदारी है, बाद में उसको समझाया जा सकता है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आज आपके पास है, आपके साथ है। बच्चे ने हंसकर देखा है तो उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें है ना आपका पूरा दिन बना सकती हैं। वरना टेंशन का क्या है भाई, घर के फर्नीचर से पैर की कानी उंगली टकराने से ही मूड खराब हो जाता है और टेंशन सी हो जाती है। नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ करना चाहते हैं या उदास चेहरे के साथ। यूं ही चलते चलते खुद को शीशे में देखिए और देखकर खुद ही सोचिए कि स्माइलिंग फेस आप पर ज्यादा सूट करता है या सैड टेंशनाइज फेस। मेरी बात पर गौर जरूर करिएगा। इसी तरह करेंगे और भी बहुत सारी बातें। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी।

वेलकम बैक बनारस। तो अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अपने शहर बनारस में क्या कुछ हो रहा है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार को काशी में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। जी हां, सिग्रा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10,000 दिए जलाकर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। शाम ढलते ही दीपों की रोशनी से स्टेडियम जगमगा उठा। नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने पहला दिया प्रज्वलित किया। दियों से प्रधानमंत्री के नाम की आकर्षक आकृतियां बनाई गयी। आयोजकों ने इसे प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा और शुभकामनाएं व्यक्त करने का माध्यम बताया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने खेल सुविधाओं के विकास और संपूर्णानंद स्टेडियम के कार्यकल्प के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। दीपोत्सव के दौरान बधाई के स्वर गूंजते रहे। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नवीन सिंह, वॉलीबॉल संघ के सचिव सर्वेश पांडे, साई के सहायक निदेशक सुधांशु द्विवेदी, कनाई चंद्रकला पत्ता, अतुल पांडे, रोहित सिंह, कोच पूजा यादव, कोच आशीष, एसडीएम सदर और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट नितिश सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें बनारस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी की ओर से गुरुवार को पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के जरिए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता और जन सेवा का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत वाहिनी के नवीन परिसर में पौधारोपण अभियान से हुई। कमांडिंग ऑफिसर अनूप सिंह बिष्ट सहित अधिकारियों और जवानों ने पौधे लगाए। इस दौरान हरित परिसर विकसित करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया गया। अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के संवर्धन को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। इसके बाद रश्मि नगर लंका में नगर निगम और अन्य संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें वाराणसी कैंट

के विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई, साथ ही लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने और आपदा के प्रति सजग समुदाय के निर्माण के लिए जागरूक किया गया। इसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें स्थानीय नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ जरूरत के समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता बताना रहा। NDRF की ओर से आयोजित इन कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वाहिनी नियमित रूप से आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों के साथ जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित करती है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और आपदा के प्रति सक्षम समुदाय तैयार करने में योगदान देना है। वहीं अब आपको बताएं, बनारस की काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित ग्रामीण विकास केंद्र में गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा का पूजन समारोह श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सैकड़ों महिलाओं ने मशीनों और अन्य उपकरणों की विधि विधान से पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार और आरती से पूरा केंद्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर केंद्र को फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सुबह से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं केंद्र पहुंचने लगी। सबसे पहले महिलाओं ने परिसर की साफ सफाई की और इसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू की। पूजन के दौरान महिलाओं ने केंद्र में रखी सिलाई मशीनों और अन्य उपकरणों पर रोली अक्षत लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न होने के बाद आरती उतारी गई। महिलाओं ने श्रद्धा पूर्वक जयकारे लगाए। पूजा के बाद सभी उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण भी किया गया। पूजन में शामिल महिलाओं ने कहा कि सिलाई मशीन उनके लिए प्रशिक्षण और रोजगार का साधन होने के साथ आत्मनिर्भर बनने का माध्यम भी है। विश्वकर्मा पूजा के जरिए उन्होंने अपने कार्य में उपयोग होने वाली मशीनों और उपकरणों के प्रति सम्मान प्रकट किया। महिलाओं ने भगवान विश्वकर्मा के परिसर की सुख समृद्धि, अपने कार्यों में सफलता और रोजगार के नए अवसर मिलने की कामना की, साथ ही केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प भी व्यक्त किया। यही नहीं बनारस, साथ ही आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में सेवा संकल्प अभियान से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पूजन के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर सभी ने बाबा विश्वनाथ के धाम में विशेष पूजन अर्चन किया है और प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा विश्वनाथ से कामना की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करें। उनके नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासी भारत को दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए देखें। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर काशी में पुरोहितों और सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही काशी से वडनगर की यात्रा पर निकलने वाले बाइकर्स से संवाद कर उनका सम्मान किया गया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हृदय से बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। साथ ही आपको बताएं बनारस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितम्बर 1950 को वडनगर में ही हुआ था। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं क्या है खास आज सेहत के पिटारे से। तो बनारस बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना एक आम समस्या बनती जा रही है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी मिनरल है। यही वजह है कि बचपन से ही हमें रोज दूध पीने की सलाह दी जाती थी। हालांकि हर किसी को दूध पसंद हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या भी होती है, जिसमें वो दूध और दूध से बने कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। ऐसे में कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

भारतीय रसोई में कई ऐसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जी हाँ, इन्हें रोजमर्रा की डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है। पहला है तिल। तिल कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। 100 ग्राम बिना छिले तिल में करीब 975 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और हेल्दी फैट जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसके बाद रागी। रागी यानी फिंगर मिलेट को कैल्शियम से भरपूर अनाज माना गया है। 100 ग्राम रागी में करीब 344 मिलीग्राम कैल्शियम हो सकता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए डाइट में शामिल किया जा सकता है। रागी से दलिया, रोटी, चीला, डोसा और कई तरह के स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही इसके बाद राजगीरा। राजगीरा भी कैल्शियम से भरपूर पारंपरिक अनाज है। 100 ग्राम राजगीरा में लगभग 215 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जा सकता है। ये ग्लूटेन फ्री विकल्प है और इसमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी मौजूद हैं। साथ ही सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसानी से मिलने वाला सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन और इससे बने खाद्य पदार्थ जैसे टोफू भी कैल्शियम पाने का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। खास तौर पर जो लोग दूध या डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करते, उनके लिए सोया आधारित चीजें उपयोगी हो सकती हैं। टोफू को सब्जी, सलाद या स्टर फ्राई के रूप में भी खाया जा सकता है। साथ ही अगला है चना। चना भारतीय घरों में आसानी से मिलने वाला पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। इसमें कैल्शियम के साथ प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे भिगोकर, उबालकर या चाट के रूप में भी खाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, पालक, सरसों का साग, बथुआ और चौलाई जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। इनमें विटामिन और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। पालक, सरसों का साग, बथुआ और चौलाई जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी कैल्शियम समेत कई जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। तो ये था बनारस आज सेहत के पिटारे से खास। इसी के साथ अब मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति। मिलूंगी आप सभी से फिर एक नए दिन, फिर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आस पास वालों को भी खुश रखिए। टाटा, बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: या मैं किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है।

0: महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत राज्य भर में जलाए गए दिए। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिरवा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से कल सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि गुजरात के वडनगर जाने वाली सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 250 बाइकों पर सवार 500 युवा इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
3: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। भारत का एआई मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
2: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीक को आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बनाना ही प्रधानमंत्री का विजन है।
4: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की। यूपीआई से लेन देन यह हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं। अब एक सेकंड में यूपीआई के माध्यम से आप जहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते हैं। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में हर दिशा में अपनी सोच को स्थापित किया है और आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। कार्यक्रम में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। आयोजन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई और धाम के पुरोहित, आचार्यों तथा स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के जनसेवा से राष्ट्र सेवा के 25 वर्षों पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल शाम राज्य भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश भर में कल शाम को जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और लाभार्थियों ने सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप जलाकर सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अहिल्याबाई घाट पर 76 बटुकों ने मां गंगा का पूजन किया और मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। लखनऊ में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वृहद सफाई अभियान शुरू किया। बस्ती जिले में

0: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने सेवा सुशासन पखवाड़े की शुरुआत की। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का 25 वर्ष का राजनीतिक सफर देश के विकास और सुशासन से जुड़ा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल शाम प्रदेश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस दौरान गोरखपुर में वहां के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की अगुवाई में कल शाम आशीर्वाद के दिए जलाए गए। एक अन्य कार्यक्रम में वहां के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने मशाल जलाकर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद नगर निगम की ओर से करीब 5100 दिए जलाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रस्तुत है MyGov प्लेटफॉर्म को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
1: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्मा स्वरोजगार और स्वदेशी मेला 2026 पर आधारित प्रदर्शनी तथा मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के दूसरे चरण के तहत की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में आयोजित विश्वकर्मा पूजन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।
3: नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने आर्टिजन्स का सम्मान करता है वह आगे बढ़ता है।
0: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करके निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का एक प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव के मतदान दिवस पर मशीनों में होने वाली खराबी की आशंकाओं को कम से कम करना है। मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सियारा गांव में कल शाम बोरिंग करते समय हुए एक विद्युत हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आने के कारण बोरिंग मशीन में करंट उतर आया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम

0: के तहत राज्य भर में चलाए गए दिए। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ, योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा

0: रूम का किया निरीक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है शहनाई वादन। कलाकार हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन वसाथी। राग है बिलास खानी तोड़ी। आपके साथ तबला संगति कुमार लाल मिश्र की है।

श्रोताओं, अभी आप शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे उस्ताद अली अहमद हुसैन वसाथी, राग था बिलास खानी तोड़ी। आपके साथ तबला संगति कुमार लाल मिश्र की थी। अब लीजिए सुनिए शहनाई पर बजाया भैरवी में धुन। कलाकार हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन वसाथी।

0: अभी आप शहनाई पर बजायर भैरवी में धुन सुन रहे थे। कलाकार थे उस्ताद अली अहमद हुसैन वसाथी। आपके साथ तबला संगति कुमारलाल मिश्र की थी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: दुनिया भर में देश हमारा स्वच्छता की पहचान बने, एक मिसाल ऐसी जिसका सारा जहां सम्मान।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट है और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च

0: प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और पब्लिक पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
4: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
3: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
5: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
3: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम

0: 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ है शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमन अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव निशान पर रोक लगा दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल जिमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए

0: एजेंसी एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए यूजीसी एनईटी इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने बिहार, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इंतखाबी कमीशन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल में आइंदा होने वाले असेंबली जिमनी चुनाव के दौरान पार्टी का नाम और चुनाव निशान इस्तेमाल न करें। अपने उबूरी हुक्म में कमीशन ने दोनों ग्रुपों से कहा है कि वो आज दिन में 11 बजे तक अपने अपने ग्रुपों के नाम पेश करें ताकि कमीशन उन्हें तस्लीम कर सके। चुनाव कमीशन ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय की जेर क्यादत पार्टी के दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं के मौकफ की समात के बाद उबूरी हुक्म जारी किया। बाद में कमीशन ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो ग्रुप हैं जिनमें से एक की क्यादत ममता बनर्जी और दूसरे की जनाब अरूप रॉय कर रहे हैं और दोनों ही ग्रुप अपने आप को असल पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेगीनगर सीटों के लिए असेंबली जिमनी चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होना है। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल 2026 से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। उम्र दाखिला की वजारत के नुमाइंदे बिल की दफात के बारे में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 12 अगस्त को गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी थी। मस्कूरा बिल में गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। इसका मकसद गैर मुल्की अदियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी में लोकसभा के 21 मेंबर हैं जिन्हें स्पीकर ने नामजद किया है। इसके अलावा इसमें राज्यसभा के भी 10 अरकान हैं जिन्हें चेयरमैन मौसूफ ने नामजद किया है। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में शामिल लोकसभा के सरकर्दा अरकान में तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनिका गुरुस्वामी हैं। कमेटी को अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक ऐवान में पेश करना है। दिल्ली से विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर काबिल भरोसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश रही है और मुल्क इस जरूरत की खातिर मुसलसल खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने उजागर किया कि हम अहम सनतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करेगी और दुनिया भर में सप्लाई चेन से मुतालिक चैलेंजों के दरमियान नए इम्कानात पैदा करेगी। वजीर आजम ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही।
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए यूजीसी एनईटी इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। ये एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। ये इम्तिहान मुल्क के 272 शहरों में 454 मराकज पर इस महीने की 9 और 10 तारीख को कराया गया था। एजेंसी ने इम्तिहान कराने के ताल्लुक से 16 अगस्त को नोटिस जारी किया था। उम्मीदवार अपने अपने मजामीन की हतमी आंसर कीज देखने के लिए اپنے ایپلیکیشن نمبر اور پاس

0: पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी है कि वो इम्तिहान से मुतालिक ताजा जानकारी के लिए यूजीसी एनईटी वेबसाइट को बाकायदगी से देखते रहें। किसी भी तरह की वजाहत के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर राब्ते के लिए फराहम की गई तफसीलात के जरिए एनटीए हेल्प डेस्क से रुजू कर सकते हैं। हतमी आंसर कीज का जारी करना यूजीसी एनईटी के इवेलुएशन के अमल में एक अहम कदम है, जिसके जरिए भारतीय यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अहलियत का तायुन किया जाता है। वजारत खजाना नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब भारत के सफर की माली एयानत पर दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसका आगाज आज से हो रहा है। वजारत ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़रा खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरीज के लिए होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मुख्तलिफ वज़रा आला और रियासतों के वज़रा खजाना के हमरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी अवामी जिंदगी के 25 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। उनका यह सफर अवामी खिदमत के जरिए मुल्क की खिदमत के मंत्र पर मबनी है और यह सिलसिला आज तक जारी है। खिदमत और अच्छी हुकुमरानी के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के लिए मुसलसल कोशां हैं। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाए जाने के अहद के तहत लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस सिलसिले में आज हम नक्सलिज्म के खात्मे पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में नक्सलिज्म के खात्मे के बाद गोलियों की आवाजों के बजाय एक बार फिर स्कूल की घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। बस्तर खित्ते में सिक्योरिटी कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जदीद अवामी खिदमात के मराकज में बदल गए हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम बस्तर की बदलती हुई तस्वीर की अक्कासी कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इलाके दहशतजदा थे वो अब हुनर के लिए मौके पैदा कर रहे हैं।
2: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजारत खारजा ने 1980 के पासपोर्ट जाब्तों में तरमीम करते हुए पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया गया 36 सफहात पर मुश्तमिल एक आम पासपोर्ट 5 साल तक या उसकी उम्र 18 साल होने तक जो भी पहले हो काबिल कबूल रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में हल्के जंगी तैयारे तेजस फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ट्विन सीटर ट्रेनर्स और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय फिजाइया को सौंपेगी। वो पवन हंस लिमिटेड को आइंदा सिलसिले के ध्रुव हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आबादी के वजीर राममोहन नायडू शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जाना अंदरून मुल्क सलाहियतों के इस्तेहकाम और गैर मुल्की जराए पर इन्हिसार को कम करने की जानिब एक और कदम है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने रूस के अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के तहत रूस की जमीनी अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस राब्ते में फौजी इश्तराक को मुस्तहकम करने और तरबती राब्तों को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सलाहियत साजी को मजबूत करने पर भी तवज्जो दी गई। अपनी आमद पर जनरल धीरज सेठ को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में उन्होंने मॉस्को में नामालूम फौजी के मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। अमरीका और ईरान के दरमियान महाज आरई के तनाजुर में ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते होने वाले अक्वाए मुत्तहदा जनरल असेंबली के आला सतह के इजलास में शिरकत के लिए ईरान के सरकर्दा रहनुमाओं के लिए वीजा की मंजूरी दे दी है। इनमें ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान और वजीर खारजा अब्बास अराकची शामिल हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान 6 महीने से ज्यादा अरसे से जारी टकराव के तनाजुर में यह कदम गैर मामूली है। उधर यमन में ईरान

0: की पुष्ट पनाही वाले हौसी बागियों ने सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और बहर अहमर में बहरी जहाजों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस और चीन ने अक्वामे मुत्तहदा की उस करारदाद को वीटो कर दिया है जिसकी रूस से अक्वामे मुत्तहदा माहिरीन को ईरान के खिलाफ दोबारा आयद की गई पाबंदियों की निगरानी जारी रखने का अख्तियार मिल जाता। ईरान के एटमी प्रोग्राम के मामले पर पिछले साल ये पाबंदियां फिर से नाफिज की गई थीं। अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियां अब भी नाफिज हैं जिनके तहत बैरून मुल्क ईरान के असासों पर रोक, ईरान के साथ हथियारों के समझौतों की मुअत्तली और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ताल्लुक से ताजीरी कार्रवाई करना शामिल है। पाकिस्तानी फौजियों ने बलूचिस्तान में 3 शहरियों को हलाक कर दिया है। इंसानी हकूक की एक अहम तंजीम ने इंकशाफ किया है कि 3 लाशें जिला ग्वादर में दनुक और कुलदन इलाके में मिली हैं। ये ताजा वाकया सूबे में मावराए अदालत कत्ल और जबरन गुमशुदगी की लहर के पस मंजर में पेश आया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज बिहार, उड़ीसा, जेली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। मौसमियात की एजेंसी ने आज कौमी राजधानी में आमतौर पर मतला अबरालूद रहने की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर्स और 1 गेंद में महज 94 रन पर आउट हो गई। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों सेमिकॉन इंडिया 2026 के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, मुल्क में सेमीकंडक्टर का निजाम तेजी से फैल रहा है, दूसरे फेज के लिए $13.5 अरब सरकार खर्च करेगी। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, अमरीकी टैरिफ पर भारत का रद्दअमल, 140 करोड़ लोगों के मफादात से कोई समझौता नहीं। TMC के इंतखाबी निशान और नाम के इस्तेमाल पर इंतखाबी कमीशन के जरिए रोक लगाए जाने की खबर को भी अखबार ने नुमाया किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों की हलाकत की खबर को रोजनामा इनकलाब ने कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अल-क़ौमी खबरें इस तरह हैं, हौसियों के खिलाफ सऊदी अरब का बड़ा हमला, 1 शहरी हलाक, मवासलाती टावर तबाह।
0: और बाखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव निशान पर रोक लगा दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीटिंग वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरमा इन संदेशों के बाद।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

श्रोताओं को नमस्कार। आज की मधुरमा के साथ आपके रेडियो साथी सिद्धार्थ का। आज की मधुरमा में बातें होंगी हिंदी सिनेमा जगत की एक बेहतरीन अदाकारा जिन्होंने अभिनय को जिया, साधना की और कुछ ऊपर वाले का वरदान, या यूं कहें कि शायद ऊपर वाले ने उन्हें अभिनय कला में अपना विशेष योगदान देने के लिए ही भेजा। ये हैं शबाना आजमी। जन्म 18 सितंबर सन 1950, हैदराबाद, भारत। शबाना आजमी ने 1974 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और जल्द ही समानांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। फिल्म का नाम अंकुर, रिलीज सन 1974। शबाना आजमी भारत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। जन्मदिन की उनको ढेरों शुभकामनाएं। ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म स्वामी से है। इस फिल्म में शबाना आजमी के किरदार का नाम था सौदाबिनी।

श्रोताओं, शबाना आजमी ने जिन भी किरदारों को जिया, बिल्कुल डूब कर अभिनय किया। कहा जाए तो किरदारों ने किरदारों के साथ पूरा पूरा न्याय हुआ। यहाँ पर यह कहना भी ज़रूरी है कि इनके पिता मशहूर शायर कैफी आजमी हैं, जो अपने आप में एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक रचनाएं इनके नाम हैं। यहाँ इनकी बेटी शबाना आजमी जी की बात हो रही है, आज क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। आइए सुने फिल्म परवरिश का गीत, रिलीज सन 1977, और इस फिल्म में शबाना आजमी के किरदार का नाम था शब्बू।

श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मधुरिमा आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से। आज का कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी पर। आज इनका जन्मदिन है और हम उन्हीं गीतों को आपको सुनवा रहे हैं जिन गीतों में शबाना आजमी पर्दे पर नजर आईं। इन्हें इनके अभिनय के लिए 1985 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, फिल्म भावना के लिए 1984 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, फिल्म अर्थ के लिए 1978 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म स्वामी के लिए मिल चुका है। हिंदी सिनेमा में एक दौर ऐसा भी था जहां समानांतर फिल्में खूब पसंद की जाती थीं, जिन फिल्मों की कहानी फिल्म की जान होती थी। यह फिल्म मासूम का गीत रिलीज सन 1983। इस फिल्म में शबाना आजमी के किरदार का नाम इंदु मल्होत्रा था।

शुदा 1983 से 1985 तक 3 साल तक लगातार आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली बनी। यह उन्होंने फिल्म अर्थ और पार में अपनी भूमिका के लिए प्राप्त किए। फिल्म गॉडमदर रिलीज सन 1999 से उन्होंने एक और राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया, जिससे वह 5 पर आ गईं। प्रमुख फिल्में उनकी रहीं निशांत 1974, कादंबरी 1976, फकीरा 1976 की ये फिल्म थी, और अमर अकबर एंथनी 1977, कर्म 1977, स्वामी 1977, स्वर्ग नर्क 1978, अमरदीप 1989, लहू के दो रंग 1989, ज्वालामुखी 1980, अपने पराये 1980, थोड़ी सी बेवफाई 1980, हम 5 1980, स्पर्श 1980, अवतार 1983, एक पल 1986, रखवाला 1989। और ये गीत जो आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, ये है फिल्म अमरदीप से हमने लिया है, और इस फिल्म में शबाना आज़मी के किरदार का नाम राधा था।

श्रोताओं, शबाना आज़मी जी को एक बार पुनः उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हम देते हैं। आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से उन्होंने समांतर फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों में बराबर रूप से अभिनय किया और अभिनय करना जारी रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलते चलते ये गीत फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से आइए सुनते चलें। रिलीज सन 1980, इस फिल्म में शबाना आज़मी के किरदार का नाम था नीमा चौधरी।

श्रोताओं इसी गीत के साथ ही आज की मधुर महिमा के लिए आपका रेडियो साथी सिद्धार्थ यहीं पर चाहता है अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

में बीते माह भारी बारिश रही। गंगा, सोलानी नदी, काली नदी और हिंड नदी के किनारों के गांव में कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति रही। जिला प्रशासन यहां पूरी तरह चौकन्ना रहा और बाढ़ के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, न ही अत्यधिक नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने की फसल पककर तैयार हो रही है। 1 अक्टूबर से कोल्हुओं में गन्ने की पेराई प्रारंभ हो जाएगी। चीनी मिलों ने भी गन्ने की पेराई को लेकर चीनी मिलों में मरम्मत आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा लगभग 8,14,00,000 की लागत से नवनिर्मित भारोत्तोलन हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट एवं बैडमिंटन क्रीड़ा हॉल के जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। 12,55,00,000 की लागत से कराए जा रहे सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जनपद बिजनौर की थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट टीम के सदस्यों के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो तथा कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जनपद के खिलाड़ियों को आधुनिक हॉल एवं सिंथेटिक ट्रैक की सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। श्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं एवं खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अपने अभ्यास एवं प्रशिक्षण के लिए बेहतर संसाधन मिलेंगे तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराए जाएं, जिससे मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों को इन आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। मुजफ्फरनगर में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी की टीमों ने मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कुल 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। 5 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। मुजफ्फरनगर जनपद की फास्टैग कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने न्याय का एक ऐसा इतिहास लिख दिया है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर से न्याय की गाथा लिखकर चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने मुजफ्फरनगर जनपद में 9 संगीन मामलों में 22 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव रोहाणा स्थित रेलवे स्टेशन पर कोविड काल से किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं था। क्षेत्रवासी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे, जिसको लेकर क्षेत्र विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजनौर सांसद चंदन चौहान के माध्यम से मांग पत्र भी रेल मंत्री तक कई बार पहुंचाया। रेल मंत्री स्वर्णी वैष्णव से भी मुलाकात की गई। जयंत चौधरी के माध्यम से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और सांसद चंदन चौहान को यह सफलता मिली और दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस जो हरिद्वार से चलकर देवबंद के रास्ते रोहाणा पहुंची और जहां उसका ठहरा हुआ। रेलवे स्टेशन पर पहले से ही मौजूद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान और उनके समर्थकों ने ट्रेन का स्वागत किया। नेपाल में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप की पहल पर चलाए गए नेपाल हेल्पिंग हैंड अभियान के तहत एकत्र खाद्य सामग्री को टाउन हॉल मैदान से नेपाल के लिए रवाना किया गया। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने खाद्य सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने अभियान में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया और कहा कि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से सहायता सामग्री भेजने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप द्वारा चलाए गए अभियान को विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन मिला। नगर पालिका परिषद के सभासदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने भी अभियान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र सहित जनपद की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों में लगभग 300 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इन कार्यों में नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, क्षमता वृद्धि, नई विद्युत लाइनों का निर्माण, नए विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। 78,82,00,000 की लागत से 132/33 KV विद्युत उपकेंद्र सुजड़ू एवं संबंधित 132 KV लाइन का निर्माण हुआ। 62,13,00,000 की लागत से 220 KV विद्युत उपकेंद्र बधाई कला का निर्माण कराया गया। दीनदयाल योजना के अंतर्गत 50 नए विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थापना की गई, जिस पर लगभग 1,09,00,000 की लागत आई। मुजफ्फरनगर के ग्राम दूधली में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन जहारवीर गोगा महाड़ी पर 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन हुआ।
हम उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने जहारवीर गोगा जी की

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
2: मुजफ्फरनगर जिले

0: पहाड़ी पर विधिवत दर्शन एवं पूजन कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। ऐतिहासिक मेले में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। श्रद्धालु गोगा महाड़ी पर प्रसाद चढ़ाकर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा परिवार एवं समाज के सुख शांति की कामना करते हैं।
1: मुजफ्फरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
2: हाथरस जनपद के इतिहास, पौराणिक विरासत एवं 115वें श्री दाऊजी महाराज लक्की मेले की भव्यता को अब सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी अतुल बस ने कलेक्टर सभागार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के साथ बैठक कर जनपद हाथरस के इतिहास, पौराणिक विरासत, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा 17 तारीख को लगने वाले 115वें राजकीय श्री दाऊजी महाराज लक्की मेले की विशेषताओं को व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हाथरस का इतिहास, यहाँ की पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं, सांस्कृतिक विरासत और श्री दाऊजी महाराज का प्रसिद्ध लक्की मेला जनपद की विशिष्ट पहचान है। इनमें जुड़ी अनसुनी एवं रोचक कहानियों को आधुनिक डिजिटल माध्यमों के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने सभी इन्फ्लुएंस से अपील की कि वे जनपद की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर उच्च गुणवत्ता की तथ्यपरक और आकर्षक वीडियो तैयार कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। हाथरस जिले में ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग MLC का कार्य संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव 2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल बस तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीति दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग निर्धारित प्रोटोकॉल एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रारंभ की गई। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जिला गंगा समिति हाथरस द्वारा आज कृषि विज्ञान केंद्र सिकंदर राव में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती विषय कार्यशाला एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न पद्धतियां और उनसे लाभों तथा रासायनिक उर्वरकों एवं अन्य रसायनों पर निर्भरता कम करने के संबंध में सरल एवं व्यवहारिक जानकारी दी। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी एवं जल स्रोतों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के योगदान देने के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने तथा प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़े जाने के संबंध में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वस्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दायित्वों का निर्वहन शासन की मंशा के अनुरूप करने के निर्देश दिए। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर विकास भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदस्य राज्य महिला आयोग रेणुकौड़ एवं मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक परियोजना से एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अपनी परियोजना में सर्वाधिक फार्म भरवाए को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी हाथरस ग्रामीण सोनी कुमारी ए बाल विकास परियोजना अधिकारी सिकंदराव कल्पना दुबे को जिले के प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत सर्वाधिक फार्म भरवाने पर सम्मानित किया गया। आगामी त्योहारों विशेषकर दीपावली के दृष्टिगत जनपद में पटाखों के सुरक्षित भंडारण, परवान एवं बिक्री की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी अतुल बस ने पुलिस अधीक्षक चंद्रजीव नाथ सिन्हा के साथ पटाखा गोदाम हाथरस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने गोदाम में पटाखों के भंडारण की व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा उपकरण, फायर हाइड्रेट, पानी की टंकी, प्रेशर पंप तथा अन्य सुरक्षा संसाधनों की बारीकी से निरीक्षण किया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 2

0: 41.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये पहली सूचना हमें मिली है थाना खेतासराय जनपद जौनपुर से। सूचना अनुसार शीला बिंद, पिता शंभुनाथ बिंद और पता है मनेछा, थाना खेतासराय जनपद जौनपुर। ये 5 फिट की हैं और लाल कलर की सूट पहने हुए हैं। इनका रंग सांवला है और चेहरा गोल है। शरीर की बनावट एक गहरा है और आयु है 22 वर्ष। ये 10/5/2025 सुबह 11 बजे से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी यदि आपके पास हो तो थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को या अपने निकटतम थाने को सूचित करने की कृपा करें। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है संध्या पटेल के बारे में। पिता का नाम है महेंद्र प्रसाद पटेल, पता है मनापुर नोकरा थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर। इनकी ऊंचाई है 5 फिट और 20 वर्ष इनकी आयु है। शरीर की बनावट गहरा है और रंग सांवला है। चेहरा इनका लंबा है। ये सफ़ेद सूट और काले रंग की लैगी पहने हुए हैं। ग्राम नोकरा मनापुर से ये लापता हैं 25/6/2026 से और समय है दिन के 12 बजे का। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर को या अपने निकटतम थाने को सूचित करने की कृपा करें। एक और हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है और सूचना अनुसार सौरभ कुमार, पिता का नाम शुभम चौहान, ग्राम पोस्ट गढ़वार, थाना गढ़वार, जिला बलिया उत्तर प्रदेश। इनकी उम्र है 14 वर्ष, ऊंचाई है 4 फिट 6 इंच, रंग इनका गोरा है और पतला बदन है, एक गहरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपको मिले तो आप अपने निकटतम थाने को सूचित करें या आप सूचित कर सकते हैं अपने निकटतम थाने के अलावा थाना गढ़वार जनपद बलिया यहाँ पर भी। अभी आप सुन रहे थे कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मिनी वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: दुनिया भर में देश हमारा स्वच्छता की पहचान बने, एक मिसाल ऐसी जिसका सारा जहां सम्मान करे।
2: अपनी सड़कों और गलियों को घर का आंगन माने हम।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: मुहिब्बा ने उर्दू के बाजौक सामईन का उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान शमसुल आरफीन सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हुए हैं महफिल मुशायरा। आज की इस खूबसूरत

0: महफिल में हमारे साथ शिरकत करने वाले शोरा इकराम हैं मोहतरम जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब, मोहतरम जनाब कारी आजम साहब जहांगीर आबादी और मोहतरम जनाब मंजर यासीन साहब। आप तीनों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। सामीन, आइए अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं मोहतरम जनाब मंजर यासीन साहब को इस शेर से दावत देता हूँ कि बिस्मिल का खुदा हाफिज, कातिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज।
1: क्या कहने, क्या
0: आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज।
1: अच्छा,
0: मोहतरम जनाब मंजर यासीन साहब माइक पर।
1: मैं एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ
0: जी, अता करें मोहतरम।
1: जब

0: का खुदा हाफिज, कातिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज।
1: क्या कहने,
0: आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज। मोहतरम जनाब मंजर यासीन साहब माइक पर।
1: मैं एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ
0: जी, अता करें मोहतरम।
1: जब

0: दोपहर हो गई, सच्चाई सरेदार जो हम देख रहे हैं,
1: सच्चाई सरेदार जो हम देख रहे हैं,
0: सच्चा

0: کرم دیکھ رہے
1: شیخ سماعت فرمائیے جی عطا کریم محترم کہ

0: चुपचाप खड़े अहले कलम देख
1: क्या
0: रहे
1: सदाकत बयान कर दी भाई, बहुत ही खूब,
0: चुपचाप
1: बहुत
0: खड़े अहले कलम देख रहे हैं, दीवानगी मंजिल की तरफ लेके चली है,
1: मंजिल की तरफ लेके चली,
0: लेके चली है दीवाने मेरे नक्श कदम देख रहे हैं,
1: दीवाने मेरे नक्श कदम देख रहे हैं, बहुत ही खूब
0: कदम देख रहे हैं।

0: मिले सब से सरे बजम वो मंजर,
1: हंस हंस के मिले सबसे वो
0: सरे बजम वो मंजर, हंस हंस के मिले सब से सरे बजम वो मंजर, सरे बजम वो मंजर, लेकिन वो मेरी समत ही कम देख रहे
1: क्या बहुत लोग है, लेकिन वो मेरी समत ही कम देख रहे हैं,
0: समत ही कम देख रहे हैं।

0: कैसे हुआ जीस्त का सफर देखो।
1: तमाम कैसे हुआ जीस्त का सफर देखो। शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर देखो।
0: आहा, शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर।
1: तमाम कैसे हुआ जीस्त का सफर देखो। शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर देखो। अब शेर सुने खास तौर से
0: जी अता करें
1: कि शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर देखो। हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है।
0: हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है।
1: हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है। यकीन आए तो सांसों को रोक कर देखो।
0: वाह वाह वाह क्या जबरदस्त शेर है भाई बहुत ही खूब।
1: हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है। यकीन आए तो सांसों को रोक कर देखो। और ये आखिरी शेर के इसी को कहते हैं दीवानगी की हद बेखुद। वो दिल के पास रहे तुम इधर उधर देखो।
0: बहुत वो दिल के पास रहे तुम इधर उधर देखो बहुत।
1: इसी को कहते हैं दीवानगी की हद बेखुद। वो दिल के पास रहे तुम इधर उधर देखो। और एक मतलब एक शेर और
0: जी मोहतरम
1: पढ़ता हूँ के बेगरज बेसबब नहीं मिलते।
0: नहीं मिलते
1: पहले मिलते थे अब नहीं
0: मिलते। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: कोई अपना कहे तो मिलते हैं।
0: कोई अपना कहे तो मिलते हैं।
1: इस मिसरे को खास तौर से दोहराने की जरूरत है। कोई अपना कहे
0: तो मिलते हैं।
1: तो मिलते हैं गैर कहने में लब
0: नहीं मिलते। गैर कहने बहुत खूब बहुत खूब।
1: अर्ज किया है कि मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते।
0: मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते।
1: मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते। यहाँ तो गैर क्या अपने भी अपनाए नहीं जाते।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। यहाँ तो गैर
1: मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते। यहाँ तो गैर क्या अपने भी अपनाए नहीं जाते। ये दुनिया जीते जी क्या मर के भी मिलने नहीं देती।
0: वाह
1: कभी एक कब्र में दो लोग दफनाए नहीं जाते।
0: वाह वाह वाह वाह वाह क्या जबरदस्त शेर है।
1: ये गजल के चंद अशार पेश करके जहमत तमाम करता हूँ कि बने हुए हैं जो दुश्मन ये जान के आंसू।
0: बने हुए हैं जो दुश्मन
1: ये जान के आंसू न जाने आए हैं क्या दिल में ठान के आंसू।
0: वाह
1: के लहू किसी को नजर इसलिए नहीं आता।
2: लहू किसी को नजर इसलिए नहीं आता।
1: लहू किसी को नजर इसलिए नहीं आता। बहा रहा हूँ मैं पलकों से छान के आंसू।
0: वाह वाह वाह वाह। मुझे गालिब साहब याद आ रहे जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत ही खूब।
1: लहू किसी को नजर इसलिए नहीं आता। बहा रहा हूँ मैं पलकों से छान के आंसू। ये आबशार की सूरत जो बहते रहते हैं। ये आबशार की सूरत
2: जो बहते रहते हैं।
1: पिघलती बर्फ है या है चट्टान के आंसू।
0: वाह
1: आबशार की सूरत जो बहते रहते हैं। पिघलती बर्फ है या है चट्टान के आंसू। पिघलती बर्फ है या है चट्टान के आंसू। ये भी शेर के अगर समझ लें तो हम मुस्कुरा ना पाए कभी।
0: अगर समझ लें तो हम मुस्कुरा ना पाए कभी।
1: जो बोलते हैं किसी बेजबान के आंसू।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या।
1: अगर समझ लें तो हम मुस्कुरा ना पाए कभी।
0: वाह वाह वाह
1: जो बोलते हैं किसी बेजबान के आंसू। और आखिरी शेर के उड़ा रहे हैं जो नींदे गरीब की बेखुद।
0: उड़ा रहे हैं जो नींदे गरीब की बेखुद।
1: टपकती छत है के उसके मकान के आंसू।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह बहुत ही खूब।
1: मतला और दो तीन शेर पेश कर देता हूँ कि हर तरफ जाले थे बिल थे घोंसले छप्पर में थे।
0: वाह
1: हर तरफ जाले थे बिल थे घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर मेरे उसे कच्चे घर में थे।
0: वाह वाह
1: दस्ते शहजादी से
0: ये
1: नाजुक कम न थे।

0: चुपचाप खड़े अहले कलम देख रहे हैं। बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया,
1: बहुत ही खूब। सामिन, ये थे जनाब मंजर यासीन साहब, जिनके कलाम से आप हजरात लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब आइए इसके बाद मैं मोहतरम जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब को उन्हीं के शेर से दावत देता हूँ कि हर तरफ जाले थे बिल थे घोंसले छप्पर में थे, हर तरफ जाले थे बिल थे घोंसले छप्पर में थे, जाने कितने घर मेरे उस एक कच्चे घर में थे। मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब माइक पर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। चंद अशार पेश कर
1: जी अदा करें।
2: अर्ज करता हूँ कि तमाम कैसे हुआ जीस्त का सफर देखो।
1: वाह, तमाम।

0: हे दस्ते कनीज,
1: वाह
0: दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज, एक में मेहंदी लगी थी एक सने गोबर में थे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, एक में मेहंदी लगे थे एक सने गोबर में थे।
0: और आखिरी एक शेर और एक मक्ता के हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर,
1: हश्र में
0: हर आदमी
1: एक बार सोचेगा
0: जरूर, मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में थे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: मर के हम महशर में
1: हैं
0: या जीते जी महशर में थे। आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं, पहले सुनते हैं कि बेखुद देवता
1: पत्थर में थे। वाह वाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, सामईन ये थे जनाब मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब, जिनके कलाम से ये महफिल अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। अब आइए इस प्रोग्राम के आखिर में मैं मोहतरम जनाब कारी आजम साहब को इस शेर से दावत देता हूं कि किसी की देखकर दौलत गुलामी हम नहीं करते, किसी की देखकर दौलत गुलामी हम नहीं करते, नशे में चूर लोगों से कलामी हम नहीं करते, और तकब्बुर से जो इतराते हो दौलत देखकर अपनी, तकब्बुर करने वालों को सलामी हम नहीं करते। मोहतरम कारी आजम साहब माइक पर।

0: और ये भी शेर देखें,
1: हम अतन गोश मोहतरम
0: क्यों उठाते हो अब तो सोने दो,
1: क्यों उठाते हो अब तो सोने दो,
0: क्यों

0: चैन लेने को मुफलिसी मेरे घर आई,
1: मुफलिसी मेरे घर में आई है।
0: यकीनन सब्र ही होता है,
1: अब समझ में
0: बहुत ही खूब
1: बात आई है। और मक्ता भी मुला जाओ
0: जी, अता करें
1: कौन शोला फिशा है आजम,
0: कौन शोला फिशा है।

0: आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

श्रोताओं, इस छपरैया के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे खरपत राम और साथी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, 10:30। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

श्रोताओं, ये गीत जो कार्यक्रम का आरंभिक गीत था, इसे हमने लिया था फिल्म चांदी सोना से। किशोर कुमार की आवाज़ थी और रचना मजरूह सुल्तानपुरी की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं झनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

शुतम फिल्म छैला बाबू का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथी की आवाज़ थी। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। 10:12 और 30 सेकेंड कार्यक्रम में झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं आपके लिए DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

श्रुतम फिल्म चितचोर का ये गीत आप सुन रहे थे। गीत संगीत रविंद्र जैन का था और आवाज़ यीशुदास की थी। अब हम आपको सुनवा रहे हैं झनकार कार्यक्रम की अगली भेंट। आइए सुने ये कार्यक्रम का अगला गीत हमारा साथ साथ।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़। फिल्म का नाम चुपके चुपके, संगीत एस डी बर्मन का।

शोधन लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था हीर रांझा। संगीत मदन मोहन का था और कार्यक्रम फिल्म संगीत का झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। 10:26 और 24 सेकेंड।

श्रोताओं, फिल्म जोशीला का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोंसले और साथी की आवाज़ थी, रचना साहिर की थी और कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं झनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। 10:31 और 29 सेकेंड।

श्रोताओं, झनकार कार्यक्रम की ये रचना आप सुन रहे हैं अभी। फिल्म का नाम है हंसते जख्म और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी साथियों की और साथिया बलबीर ने, एस बलबीर ने, और संगीत मदन मोहन का, रचना कैफी आजमी की। फिल्म का नाम हंसते जख्म।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी, एस बलबीर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। ये रचना, ये कव्वाली थी, फिल्म का नाम था हंसते ज़ख्म, और संगीत मदन मोहन का था, और रचना कैफी आज़मी की थी। आप सुन रहे हैं झनकार कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, जो होता है फिल्म संगीत पर आधारित।

भूपिंदर सिंह, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम ज्वेल थीफ और संगीत SD बर्मन का।

0: साथियों का दिल बहला दे।
1: धर्म करम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले, किशोर कुमार और मुकेश की आवाजों में। इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम, वेब्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

आज शुक्रवार है और ये प्रोग्राम आज व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 यानी 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है। फिल्मों के नाम हम आपको बताएंगे, उसके बाद ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें और वही फरमाइशें शामिल होंगी प्रोग्राम में। यानी व्हाट्सएप आधारित जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उसमें आपको विवरण जो बताया जाता है उसी के मुताबिक यानी संबंधित फरमाइश आपको उसी वक्त भेजनी होती है। शुरुआत में ही अपने संदेश भेज दें। आज की फिल्में हैं आप तो ऐसे न थे, सौतन, इज्जत, कहीं दिन कहीं रात, शंकर हुसैन और निकाह। आप तो ऐसे न थे, सौतन, इज्जत, कहीं दिन कहीं रात, शंकर हुसैन और निकाह। सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें और उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक संदेश में एक ही स्थान के कुछ एक श्रोताओं के नाम लिखें, क्योंकि संदेश बहुत ज्यादा आते हैं और वो श्रोता जिन्होंने अभी ही 8-10 बार संदेश भेज दिया है उन्हें बताएं कि इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। नुकसान ये होता है कि आप जैसे ही बार बार संदेश भेजते हैं आपका नाम और पीछे हो जाता है। तो किसी भी फिल्म के लिए आप संदेश भेजें, फिर इंतजार करें, आपका नाम जरूर प्रोग्राम में शामिल होगा। शुरुआत में ही यानी आरंभ में जब फिल्मों के नाम बताए जा रहे हैं तभी संदेश भेज दें। आप तो ऐसे न थे, सौतन, इज्जत, कहीं दिन कहीं रात, शंकर हुसैन और निकाह। अगर आप कई स्थानों के श्रोताओं के नाम सेट की तरह से आपके पास हैं तो अलग अलग नंबरों से शुरुआत में भेज दें। एक ही नंबर से आप बार बार संदेश भेजते हैं तो वही बात होती है। आप तो ऐसे न थे, सौतन, इज्जत, कहीं दिन कहीं रात, शंकर हुसैन और निकाह ये आज की फिल्में हैं। और सैकड़ों की तादाद में आप श्रोताओं ने अपने नाम भेज दिए हैं फरमाइश के, तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आप ही की पसंद के इस गीत के साथ। फिल्म है आप तो ऐसे न थे, मोहम्मद रफी की आवाज, निदा फाजनी ने इसके गोल बोल लिखे हैं और उषा खन्ना का संगीत है।

और अब बारी है श्रोताओं आपके नामों की, जो महफिल आपने सजाई है व्हाट्सएप संदेशों के जरिए। तो शामिल करते हैं आपके नाम। गीत था आप तो ऐसे न थे फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, निदा फाजली मशहूर शायर हुए, उन्होंने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत था। गीत को सुनना चाहा पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशव रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन ने। आशीष कुमार महरेओ जौनपुर के हमारे श्रोता हैं और इतने ही वक्त में आपने 14 दफे संदेश भेज दिया है। भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार और अजीत कुमार। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने की फरमाइश।

बेरड़ी से हमारे श्रोता है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने। ये फरमाइश आई है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल की। नई दिल्ली से हैं स्वीटी, इंदर, रोशनी, रेहान शर्मा, ध्वनि और सानवी। आपने अपने नाम खुद ही छोटे कर दिए हैं। चौसा गोला बक्सर के श्रोता हैं जयराम बिन, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। इस्लामनगर पौसरा बदायूं के श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार राणा और विष्णु कुमार राणा। ये फरमाइश हेमंत

गौतम प्रकाश, गौतम छोटी छाया और रानी की है नौली गाजीपुर से। नवीन सिंह, ज्योति सिंह है मधुबनी बिहार के हमारे श्रोता। व्हाट्सएप संदेश ये वाला है हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा का, दतरेंगी भाटापारा से। परवणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन माही और हर्ष कुमार सेन। सोन वर्षा, खानपुर चुनार, मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप और शिवांश। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया हैं बागपत उत्तर प्रदेश के श्रोता। भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश आई है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार की। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल, आरती और पूजा। गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से आपकी फरमाइश आई। बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी, मखदूम नगर, बजडीहा, वाराणसी से। तिवरता डबरी पारा कोरबा के श्रोता हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता और मनीषा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। पाकुड़ झारखंड से ये संदेश उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता, सुवर्ण आनंद और सत्यमानंद का। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग, दीप, भकेलू यादव और राम समुज यादव की फरमाइश आई है वलीदपुर मढ़हा मऊ से। प्रकाश वर्मा, पूजा वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी छत्तीसगढ़ पलारी के श्रोता। और श्रोताओं, आपने अगर फरमाइशें भेज दी हैं तो दोबारा ना भेजें, सिर्फ इंतजार करें। फिल्मों के नाम हम दोहरा दे रहे हैं उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने शुरुआत में प्रोग्राम ट्यून ना किया हो। आगे की फिल्में हैं सौतन, जिसका गीत अभी आप सुनेंगे, इज्जत, कहीं दिन कहीं रात, शंकर हुसैन और निकाह। एक बारी संदेश भेजें, सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। और अब इस प्रोग्राम में अगले गीत की बारी, फिल्म का नाम है सौतन, लता मंगेशकर की आवाज। सावंत कुमार ने गीत के बोल लिखे हैं, उषा खन्ना का संगीत।

सौतन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज, फरमाइशें आप सबकी। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल। शिवराजपुर चुनार से ये व्हाट्सएप संदेश आया है आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्रों का। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी से। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, डब्बू बब्बू और राजू मिगलानी। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान हैं फूले नगर अम्बिवली मुंबई महाराष्ट्र के श्रोता। पद्मा टॉकीज नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह, पल्वी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी। लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका। गहमर गाजीपुर के श्रोता हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्ला बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख। जगतपुर से हैं अमरावती देवी, कुसुम देवी, मुकेश मौर्य, राजनाथ मौर्य, हर्ष मौर्य और लालू मौर्य। सुमंत कुमार प्रजापति का संदेश हथौज बलिया से आया है। पूर्णा देगांव के श्रोता हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा। कुरासी भैसा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज, सुष्मिता और दीपिका। सिराजुद्दीन अंसारी, सलीम अंसारी, निसार अंसारी, बाबूलाल, बबलू अंसारी और आप सभी हैं जिला सूरत से। सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव और कुमार संचित का संदेश जाफराबाद मराठवाड़ा से। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से। तेलंगाना भोंगीर से ये व्हाट्सएप संदेश मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा आजमीन गुड़िया का। हमारे श्रोता हैं धनौरी विटाली नांदूरा से, भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे और ऋषि शिंदे हैं रोहिदास चौक पंढरपुर के श्रोता। गुरप्रीत तंगोरी, जसप्रीत कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर हैं मोहाली पंजाब से। ये संदेश हांडी खेड़ा सिरसा से आया है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा

शर्मा और सार्थक शर्मा का। वर्डिंग किड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से कृष्ण सोनी की फरमाइश है। धनराज बैरागी और सीमा बैरागी किट्टू राजगढ़ मध्य प्रदेश से। ये व्हाट्सएप संदेश है सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम का। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से आया हुआ। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और उमंग मलिक मजनू का टीला से। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की और रविंद्र रौनक सेन, चांदनी चौक, गंडई पंढरिया, छत्तीसगढ़ से। और अब गीत इज्जत फिल्म से। बहुत सारी फरमाइशें इस गीत के लिए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

इज्जत फिल्म का युगल गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, फरमाइशें हमारे इन श्रोताओं की। शिवाजी चौक कटनी के हमारे श्रोता हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, मीरा ताम्रकार, साधना ताम्रकार, संगीता ताम्रकार और शालिनी ताम्रकार। श्रोताओं, एक बार जब आप संदेश भेज देते हैं तो दोबारा न भेजें, और किसी वजह से उस फिल्म के साथ आपका नाम न शामिल हो तो आने वाली फिल्मों के साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप दो बार तीन बार संदेश भेजते हैं तो आपका नाम जो शामिल होने की उम्मीद की ओर रहता है वो और पीछे हो जाता है। उम्मीदें बार बार कहने पर ये बात आप अब तक समझ गए होंगे, फिर भी ये 14 दफ़े जो संदेश आपने भेजा है उनके नाम हम पढ़ देते हैं। नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से हैं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेडी से। तो आपको भी एक बार ही संदेश भेजना चाहिए था, और ये 24 बार वाला संदेश है। निहारिका श्रीवास्तव चेतगंज वाराणसी से हैं, और साथ में आनंद प्रसाद श्रीवास्तव IMS BHU से। बिल्कुल एक बार ही मैसेज करें, वो किसी भी फिल्म के लिए हो, आपका नाम जरूर शामिल होगा। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना और हर्षित की फरमाइश आई है, साथ में खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा गंगानगर से। जबलपुर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं प्रीति सिंह, रितु सिंह, संकल्प, कमल सिंह और विमल सिंह। बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम फिरोजाबाद चनौरा के श्रोता हैं। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय कुमार, प्रसिद्धि, हीरामणि शेंडे और प्रतिभा गोंडाने हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। बड़ी गैवी चौराहा वाराणसी के हमारे श्रोता हैं अरुण कुमार मालवीय दर्द, शशि मालवीय अन्नू, आकाश अनमोल मालवीय श्लोक और त्रिभुवन नाथ मालवीय। तो अरुण मालवीय दर्द जी, अगर आपको आवाज पहुंच रही है इस प्रोग्राम के जरिए तो कहेंगे कि एक बार शुरू में संदेश जैसा आज आपने भेजा है वैसे आप भेज सकते हैं, वो जरूर कार्यक्रम में शामिल होगा। और आपके साथ साथ तमाम श्रोताओं से कहें जो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में जरूर अपने मेल भेजे प्रतिक्रियाओं के, वहाँ आपकी प्रतिक्रियाएँ हमारे तमाम कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। तो PKLDAIR varanasi@gmail.com पर आपकी फरमाइशों का हमें इंतजार रहता है। कर्नाटक गुलबर्गा से ये संदेश मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बनहट्टी, आसिफ इकबाल और उनके मित्रों का आया है। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा। पुरानी भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद और परिवार के बाकी सदस्य। अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले और इमरान अहमद फूल वाले हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई के श्रोता। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू और शिखा शेफाली। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन ने व्हाट्सएप संदेश भेजा है। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हीना, शकीला, जासमिन और रजिया की फरमाइश आई है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना और गुरवंश सिंह जौड़ा। दिल्ली मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। गणोका लालगंज बिहार के श्रोता हैं राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, मोती माला गुप्ता और आरके सिंह चौहान। वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर और मनोज भ्याण हैं जेवरा।

हिसार किश होता। लालमाता सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी साथ में मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुंदीबाई बागरी इफ्तिखार अहमद मोहम्मद कैफ मोहम्मद सैफ हैं नई बाजार चंदौली से। श्रोताओं आज का ये प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप ही के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:32 और 33 सेकंड का है। आपने नाम भेजा हुआ है तो जरूर आपका नाम शामिल होगा प्रोग्राम में। बने रहें हमारे साथ और

श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप ही के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:32 और 33 सेकंड का है। आपने नाम भेजा हुआ है तो जरूर आपका नाम शामिल होगा प्रोग्राम में। बने रहें हमारे साथ। और अब अगला गीत, फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात। महेंद्र कपूर की आवाज, SS बिहारी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।

महेंद्र कपूर और साथ में ये आखिरी हिस्से में आशा भोसले की आवाज। कहीं दिन कहीं रात फिल्म के लिए फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। ये फरमाइश खमरिया छत्तीसगढ़ से आई है, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार की। श्रवण निषाद, बॉबी निषाद, मनीषा कुमारी निषाद, पिंकी निषाद और सत्येंद्र निषाद हैं गोरखपुर के हमारे श्रोता। रानीगांव छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू। रामगढ़ कैंट से हमें सुन रहे हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह होरा और भारत भूषण श्रीवास्तव। सेक्टर 8 भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और टोनी दीवान।

मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट बिजनौर के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन और बिट्टू भैया। निहारिका श्रीवास्तव चेतगंज वाराणसी से। धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और शिखा। ये फरमाइश चौटाला हरियाणा से है संजय शर्मा, दारा पंडित और प्रियंका शर्मा की। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और परिवार के सदस्य हैं बठेना पाटन दुर्ग से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ हैं नई बाजार चंदौली से। ओखला संगम विहार दिल्ली के श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे बरवट वकाल बुढ़ाना से। ललन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमन पराशर और लल्लू पंडित नरन स्टेट समस्तीपुर से। ये फरमाइश काबरेल हिसार हरियाणा से सुरजीत सिंह इंदौरा और विशाल कुमार इंदौरा की। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक हैं मजनू कटीला दिल्ली के श्रोता। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांशु वर्मा पिपरलोड सरगांव से। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी और ट्विंकल। दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीस, सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा, मुबारक कुरुची तकिया आजमगढ़ के श्रोता हैं। भोपाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया हैं पटेल नगर मलौट से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से ये फरमाइश आई है मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, कौसर और अल्ताफ की। अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया से। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश, शंकर हुसैन ने फिल्म का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

लता मंगेशकर की आवाज, शंकर हुसैन फिल्म का गीत, पसंद आप सबकी, पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह। कोल सिटी बरका खाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना सोनू और तस्नीम। गांधीनगर महेश्वर के श्रोता हैं श्याम यादव, सोना यादव। बिरकोना से सनत कौशिक और प्रतिभा कौशिक, ये फरमाइश असनाव बाजार भदोही से आई है गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार यादव, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार की। नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और गौरव मंदूरकर हैं डाबकी रोड अकोला से। ग्राम नदाइल बदायूं के श्रोता हैं फिरोज खान, नूर फिरोज, अरबाज खान और शाहबाज खान। भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, दीन पला, दीपक और प्रीतम, साथ में धनराज मरकाम। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। आनंद मिश्रा, ममता मिश्रा शिवपुर वाराणसी के श्रोता हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी और शनाया इब्राहिमी की फरमाइश एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से आई है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल और विवेक। ये संदेश है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। दरेखू पंचायत जगतपुर वाराणसी से अमरावती देवी, कुसुम देवी, हर्ष मौर्य, राजनाथ मौर्य और रोहित मौर्य। जमालपुर गोगरी खगड़िया से हैं सिकंदर कुमार तांती, पूजा देवी, गुडलक कुमार, अविनाश कुमार और रितेश कुमार। सैतल मोहम्मद अमजद, सलमा फिर

इस कव्वाली के लिए फरमाइशें बहुत सारे श्रोताओं की हैं। हमारे श्रोता हैं अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, वाराणसी, अशोक विहार पहाड़िया, फेज दो है ये अशोक विहार कॉलोनी, और 42 बार संदेश भेजा है आपने, लेकिन ये हम जयराम बिंद जी से कह रहे हैं। आपका नाम शुरुआत के ही गीत के साथ शामिल हुआ था। बहरहाल जयराम बिंद, सीता मुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार, एक बार फिर से आपका नाम शामिल हो गया। लेकिन एक बार जब शामिल हो गया था, फिर 40 दफे संदेश भेजने का तात्पर्य जरूर हमें बताइएगा। सहारनपुर से हैं सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग, मौसम अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी और उनके दोस्त हैं चितौनी बनारस से कोटवा ये जगह है। महेंद्र कुमार, सरिता, सानवी, आशीष, पूजा, सतीश और नीतू हैं भीमपुर भदोही से। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल की फरमाइश लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और लड्डू गुप्ता, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और राजपाल पंकज हैं मुरादाबाद से। संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, पोटिया कला दुर्ग से आपकी फरमाइश आई। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा है दतरेंगी से। अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष और उनके मित्र सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से। उमाली महाराष्ट्र से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, ये फरमाइश उस्मान शेख, फौजी और सायरा बानू शेख की है लातूर से आई हुई। अक्षय राजभर, आशु राजभर हैं सोनवर्षा खानपुर चुनार से। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा हैं C2 जनकपुरी दिल्ली से।

छत्तीसगढ़ हस्ता नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। पहाड़गंज मुंतानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद और हबीब अंसारी मखदूम नगर बजरडीहा वाराणसी से हैं। एक फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सुधीर कुमार शुक्ला, डमरूधर गौंड, देवेंद्र साहू बामरा संबलपुर से हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह लोहगढ़ ठाकुरांवाला से। ये फरमाइश आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे और विजय शुभम बेंडे की है। प्रवीण हागोने, योगिता और प्रियाली हागोने हैं अमरावती से। ये संदेश आया है दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू और जय किशन का, कबीर धाम छत्तीसगढ़ से। विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, रायपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, निसार सलमानी, नौशाद और आलिया धनौरी तेलीवाला से। दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन आरुषि और ओशिका जंघेल। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव। हरक राम पटेल, कुंती पटेल और चंचल पटेल धमधा दुर्ग से हैं। नारवा इंद्रोका, जोधपुर राजस्थान से नरपस सोनी और वैशाली सोनी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। ये फरमाइश है योगीराज मस्के, श्रीहरी मस्के, इंदुमती मल्हार और कविता मोहन की, बिठोड़ा भोयार तहसील विदर्भ से। अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान और आयशा सबीहा। बर्फ गांव नांदूरा से शिवाली उगले और राहुल उगले। मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा बिलाई के हमारे श्रोता हैं। जौनपुर लकड़ी ग्राम से हैं चंद्रा कुमारी, चांदनी, आकाश कुमार और उनके माता पिता। मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और इसरार। मुरादाबाद से आपकी फरमाइश राय, निर्मला कुमारी। जौनपुर से हैं ऋषु मौर्य भी साथ में। तहसील रोड गंज डुंडवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील और हम्माद जमील। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, ऐजाद कुरैशी और अरीबा हबीबा पटियाली रोड गंज डुंडवारा से हैं। प्रदीप कुमार मंडल, आशीष और कुंदन पुस्तु भागलपुर से। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव लुहेड़ी महोबा के श्रोता हैं। कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़ और दयानंद गायकवाड़। ये फरमाइश है राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे और विनय शंकर पांडे की, कवर्धा पुत की कला से। संतोष भाकरे और सुनैना नांदेड़ से हैं। नारायण खांडे, रजनी खांडे लोरमी चचेड़ी से। यशमीत यशु और निरंजन सिंह सुल्तानपुर के श्रोता हैं। शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार और दीपक कुमार जाखोद राजस्थान से हैं। विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोकपुरी और सुशीलपुरी मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से। शास्त्री नगर बीड, किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया साथ में विशाल। तो श्रोताओं, ये थी आपकी फरमाइशें और आज के आपकी पसंद के गाने। कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जरूर हमें पहुंचाएं pkld@gmail.com पर और वहां पर फरमाइशें न भेजें। अब आज का ये कार्यक्रम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: बदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता।

आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियाँ। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोककर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक

0: लिंक्डइन और एक्स पर भी सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।

0: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
1: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता। उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
2: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: ए, पानी ले आ रहा है?
1: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
3: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
1: न कमाता है, न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
3: दीदी,
1: अरे इनको तो
3: दीदी।
4: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
3: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
4: अरे?
3: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
4: हाँ हाँ,
3: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
4: अब फिर क्या?
3: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
4: रो मत आलोका। आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी।

0: बहनों कल सभी तैयार रहें।
1: जी दीदी।
0: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
1: बिल्कुल चलेंगे।
0: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
1: जी दीदी।
2: जी दीदी।
1: हम सब तैयार हैं।
3: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
4: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
4: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
3: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
4: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
3: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।
4: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन-सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थी।
3: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
4: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
5: Ladies and gentlemen, Royal Society of London welcomes you all at this occasion. We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
6: Thank you.

0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
1: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
2: जी।
1: बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
2: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी।
1: सोच रही थी क्या?
2: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है, उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
1: बिल्कुल।
2: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
1: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
2: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
1: हाँ।
2: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
2: आपको नहीं लगता?
1: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
2: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
1: सही कहा तुमने, मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
2: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
1: बिल्कुल।
2: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
1: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
4: करता है। जब बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ।
2: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
4: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।

0: बहुत बढ़िया है,
1: किसी के आगे क्यों मांगना।
0: सही बात है,
1: हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
0: बिल्कुल।
2: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थी, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
3: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
4: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रही।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: कार्यक्रम में आज आइए सुने योगेश कुमार मिश्र की गाई गजलें। पहली गजल बशीर बद्र ने लिखी है।

बशीर बद्र का कलाम अभी आप सुन रहे थे योगेश कुमार मिश्र के स्वर में। अगली गजल अहमद फराज की लिखी हुई, फनकार योगेश कुमार मिश्र।

अहमद फराज का कलाम अभी आप सुन रहे थे। आवाज योगेश कुमार मिश्र की थी। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं तबले पर प्रस्तुत एक ताल। कलाकार हैं रामजी मिश्र। सारंगी पर लहरा दिया है जक्कन खान ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तबले पर प्रस्तुत एक ताल। कलाकार थे रामजी मिश्र, सारंगी पर लहरे दिया जक्कन खान ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को है अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता

0: संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आईचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अशरफुन निशा, पति का नाम नसरुद्दीन, ये कोटवा लोहता वाराणसी की निवासी हैं और 4 जुलाई 2026 से अपने घर से लापता हैं। अशरफुन निशा की आयु है 70 वर्ष, कद 152 सेंटीमीटर, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी राजा तालाब से प्राप्त एक सूचना। इसके अनुसार अभिषेक यादव, पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, ये राजा तालाब वाराणसी के निवासी हैं और 9 अगस्त 2026 की सुबह 9 बजे से कृष्णदत्तपुर मुंगवार से लापता हैं। अभिषेक यादव की आयु है 19 वर्ष, कद 165 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, शरीर औसत, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था टी शर्ट और पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना। इसके अनुसार क्षमता, पति का नाम मुकेश कुमार, ये सिंधौरा वाराणसी की निवासी हैं और 9 अगस्त 2026 से हीरामनपुर से लापता हैं। क्षमता की आयु है 32 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इनकी दोनों आंखें हल्की तिरछी हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे आज रात 10:25 पर। रात में 8 बजे

जापान में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। समय याद रखें, रात्रि 8 बजे का। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अंजुमन कार्यक्रम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला, इसकी दूसरी कड़ी आज होगी। इसके अलावा लोकगीत कलाकार खरपतराम और साथी, इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। 5:15 पर युवा साथी अपने कार्यक्रम युवाणी में सुनेंगे शामे गजल, यूथ डायरी में आज का शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा 2:30 पर, प्रस्तुति स्तुति मिश्रा की होगी। कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में 1:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा पर्व त्योहार और हमारे परंपरागत परिधान। इसके अलावा चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं इलाकाई खबरें, लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने कल वाराणसी से सेवा संकल्प अभियान का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला और वज़ीर-ए-दिफा ने सेवा संकल्प बाइक यात्रा को वज़ीर-ए-आज़म के काम की जगह वाराणसी से उनकी जाय पैदाइश गुजरात के वडनगर तक रवाना किया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आज मुल्क क्वांटम कंप्यूटिंग, AI मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के शोबों में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है।
1: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। भारत का AI मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
0: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम का विजन टेक्नोलॉजी को आम शहरियों की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जिंदगी को आसान बनाना है।
2: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। UPI से लेन देन यह हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं। अब एक सेकंड में UPI के माध्यम से आप जहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है।
0: इस मौके पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि वजीर आजम ने गुज़िश्ता 12 सालों में हर सिमत में अपना नुक्ता नज़र कायम किया है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज मुल्क बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस तकरीब में BJP के रियासती सदर पंकज चौधरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर काशी विश्वनाथ धाम में खसूसी दुआएं की गईं और धाम के पुजारियों, आचार्यों और सफाई कारकुनों को एजाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म की 25 साल आवामी खिदमत और कौमी खिदमत पर मबनी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर कल शाम रियासत भर में आशीर्वाद का दिया नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रोग्राम में शिरकत की। रियासत भर में अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और इस्तीफादा कुनिंदगान ने कल शाम अवामी मकामात, अस्पतालों, घरों और इदारों पर चरागाह करके सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी

के 76वें सालगिरह के मौके पर जनभवन कॉम्प्लेक्स में बनाए गए गंगा सागर नमो नमः प्रोजेक्ट का कल गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। दोनों नायब वज़रा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब के दौरान तलबा ने सकाफती परफॉर्मेंस पेश की। इससे पहले वजीर आजम की सालगिरह पर जनभवन में 9 से 14 साल की उम्र की 100 लड़कियों को HPV के खिलाफ टीका लगाया गया। इसके अलावा जनभवन के अहदेदारों और मुलाजमीन ने तपेदिक के 76 मरीजों को गोद लिया और उन्हें गजाइत के पैकेट तकसीम किए। भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर योगी हुकूमत ने रियासत के रवायती कारीगरों, दस्तकारों और दस्ती मजदूरों को खुद रोजगार से जोड़ने और उनके कारोबारी इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केट से जोड़ने के लिए अहम इकदाम किए हैं। कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक्किद एक प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना 2.0 के तहत विश्वकर्मा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्वदेशी मेला 2026 पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने मार्जिन मनी लोन पोर्टल का भी आगाज किया और मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक और टूल किट्स तकसीम की। रियासती चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रणवा ने इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल महोबा में EVM गोदाम और स्ट्रांग रूम का मुआयना किया। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने बताया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत भर में तैयारियां जारी हैं। उन्होंने वजाहत की कि EVM की पहली सतह की जाँच का एक अहम मकसद पोलिंग के दिन मशीन में खराबी के इम्कान को कम करना है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 19 सेकंड हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: सखियों के साथ,
2: सखियों के बाद,
1: सखियों के जज्बात,
2: गृहलक्ष्मी।

0: ढेर सारी बातें होंगी, हमारी आपकी मुलाकातें होंगी, चर्चा होगी, फोन इन में सखियों से हंसी ठिठोली भी होगी। अब आप सोच रही होंगी कि होगा कहाँ ये सब? अरे यही हमारे गृहलक्ष्मी के कार्यक्रम में, और कहाँ। मैं हूँ आपकी सखी कंचन।
1: और मैं हूँ मंजरी।
0: नमस्कार सखियों। नमस्कार मंजरी जी,
1: नमस्कार सखियों। नमस्कार कंचन जी।
0: कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और मौसम भी आज कुछ कुछ अच्छा सा ही हो गया है ना।
0: हाँ, धूप छाँव
1: हाँ
0: हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी उमस है।
1: हाँ उमस तो है।
0: हाँ, जैसे कि हम जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, तो
1: जी
0: उसकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी?
1: बस बढ़िया, धीरे धीरे सारे काम निपटाए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हर दिन करती हूँ।
0: हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करते हैं, उन कामों में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां भी तो आती हैं ना, कि जिसे हम सोचते हैं कि हम इसे कर लेंगे, कई
1: जी
0: बार होता है कि हम
1: जी
0: उसे फिर नहीं कर पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो क्या उन कठिनाइयों का सामना हम कायदे से परिवार के साथ कर पाते हैं?
1: देखिए कंचन जी, इसमें बहुत सारी सखियों का अलग अलग वो है। किसी को तो लगता है कि ये समस्याएं हैं, लेकिन जब कोई भी चुनौती या समस्या हमारे सामने आती है तो हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं कि या तो उसे हम स्वीकार कर लें या तो फिर हम हार मान लें। और हार तो सखियों हमें मानना नहीं है, तो फिर बेहतर यही है कि धैर्य और संयम के साथ में जो भी समस्या या चुनौती आई है हम उसका सामना करें।
0: यानी कि हम उसको ये मान लें कि इसे हमें सॉल्व करना ही है
1: बिल्कुल करना है
0: और ये हमारे दैनिक कार्य का ही हिस्सा है, तो
1: जी।
0: वो अच्छे से हो भी जाएगा। और अगर परिवार वाले साथ देते हैं तो पता भी नहीं चलता और कठिनाई जो है वो सॉल्व हो जाती है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें जो भी काम है हमारे पास, सुबह से लेके शाम तक, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो, उसे हम ऐसे व्यवस्थित करें कि अगर थोड़ा बहुत कठिनाई लगती भी है तो उस व्यवस्था के कारण समय भी ज़्यादा ना लगे और हमारा काम भी हो जाए।
1: जी कंचन जी, पहले जीवन ना सरल था, इसलिए कम संसाधनों में भी लोग खुश रहते थे। पर आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितनी संसाधन बढ़े हैं उतनी ही चुनौतियां भी आई हैं, तो इन्हें पार करना ही हमारे जीवन की कला है।
0: यानी कि बदलते जमाने के साथ हमें तकनीक को
1: जी
0: लेकर के आगे बढ़ना है।

0: तकनीक को समझना भी है और उसका इस्तेमाल हम अपनी कठिनाइयों को सॉल्व करने में कैसे कर सकते हैं ये भी समझना है।
1: बिल्कुल। और सखियो, जीवन तो किसी का भी आसान नहीं होता है, लेकिन जो भी सफल लोग होते हैं ना, हम अपना इतिहास उठा के देख लें तो जितने भी सफल लोग हैं इतिहास में और वर्तमान में भी, तो जितने भी सफल लोग हैं ना, उनके पीछे बड़े संघर्ष की कहानी छिपी होती है। तो जो उन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं उन्हीं का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। इसलिए अगर चुनौतियों से घबराने की बात होती है तो हम कहते हैं कि घबराने से तो अच्छा है ना कि आप उससे लड़ें, आप उसका सामना करें और फिर अपना नाम कुछ दूसरों से अलग करें। इसलिए संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए।
0: और इस व्यस्ततम जीवन में खुद के लिए समय भी निकालें। और सखियों, ये याद रखें कि समय जैसा भी हो बीत जाता है। अगर कठिन समय है तो ये समय भी बीत ही जाएगा। और मंजरी जी, ऐसे ही आत्मविश्वास से भरी अपने पर्व और त्योहार परंपराओं का मान रखते हुए उनके परिधान के विषय में हमने अपनी सखियों से कुछ बातचीत की है, तो आइए सुनते हैं कि हमने उनसे क्या बात की है।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: हेलो।
6: हेलो सखी, स्वागत है आपका गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रही हैं? आपका नाम क्या है?
5: मैं नाम अंकिता तिवारी है, मैं चितईपुर से बोल रही हूँ।
6: अच्छा चितईपुर से। तो अंकिता आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है?
5: हाँ, हम तो
6: ठीक है। मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आप अपना ध्यान तो रख रही है ना?
5: जी मैम।
6: आपके परिवार में कौन कौन है अंकिता जी?
5: परिवार में तो मेरे सास ससुर और मेरी छोटी ननद।
6: अच्छा, हम
5: हमारे दो बच्चे और मेरे
6: हस्बैंड। अभी तीज का त्योहार बीता है, तो आपने तीज के त्योहार में क्या खास तैयारियाँ की थी?
5: तीज तो खास ही रहता है।
6: साल में एक बार पड़ती है और पूरे साल इंतजार रहता है
5: जी। तैयारियाँ तो मैं नए नए कपड़े, नए नए ज्वेलरी, नए नए चूड़ी।
6: अच्छा, और आने वाले दिनों में नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि की भी कुछ विशेष तैयारियाँ होती हैं आपके यहाँ?
5: मैम नवरात्रि में तो यही आपका गरबा वगैरह होता है, डांडिया वगैरह होता है। नवरात्रि में तो माता रानी का सब लोग
6: चौकी भी बैठाते हैं,
5: जगह जगह घूमने फिरने जाता है। हाँ, कुछ लोग नवरात्र में फास्ट भी रहता है।
6: हाँ हाँ,
5: तो अलग अलग तरीके का अपना बनता भी है, उसमें फलाहार वगैरह।
6: हाँ, तो आप डांडिया खेलने जाती हैं?
5: मैम जाते तो नहीं हम।
6: अच्छा, नवरात्रि में जब चौकी वगैरह होती है तो उसमें आप क्या पहनना पसंद करती हैं? साड़ी, सूट या लहंगा?
5: वैसे तो साड़ी अच्छा लगता है।
6: यानी कि जो हमारे
5: लहंगा हुआ,
6: हाँ, जो हमारे परंपरागत परिधान हैं वो सच में अच्छे लगते हैं हमारे पर्व त्योहारों पर। तो दशहरा भी आने वाला है, दशहरा भी आप अपने बच्चों के साथ जाती होंगी देखने कहीं?
5: दशहरा।
6: अच्छा अच्छा,
5: आपने DLW मेरे यहाँ वही लगता है दशहरा का मेला वगैरह।
6: अच्छा, दुर्गा पंडाल वगैरह भी घूमती है
5: जी?

0: अच्छा.
1: वगैरह रहता है,
0: तो
1: राउंड वगैरह जलते हैं।
0: बच्चों की तो अपनी अलग ही डिमांड होती है ना कि हम तो ये
1: हाँ
0: पहनेंगे, तो क्या बच्चे भी एकदम जैसे दुर्गा माँ का दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो वो भी अपना कोई एक विशेष रूप धारण करते हैं, अपने वस्त्र पहनते हैं उस तरह से?
1: बच्चों का क्या है मैम बताएं।
0: नहीं, जैसे बच्चे लहंगा पहनना
1: बच्चे
0: पसंद करते हैं,
1: मैं
0: सुंदर सुंदर
1: हाँ उनको
0: सजना
1: तो
0: पसंद
1: लहंगा
0: करते
1: चोली
0: हैं.
1: पहनाइए, ये पहनाइए, वो पहनाइए, चूड़ी
0: हाँ,
1: पहना दीजिए, मेकअप कर दीजिए
0: अच्छा
1: लोग
0: अच्छा
1: का।
0: हाँ.
1: जी
0: अंकिता
1: ये
0: जी,
1: सब है
0: आपसे
1: लोग का
0: बात
1: डिमांड।
0: करके हमें बहुत अच्छा लगा. आप ऐसे ही अपने पर्व त्योहारों को धूमधाम से मनाते रहिए, और हमारा कार्यक्रम भी सुनना ना भूलिएगा. फोन करने के लिए धन्यवाद.
1: थैंक यू मैम।
2: नमस्कार, कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपका स्वागत है. आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं?
3: नमस्कार, मैं पूनम बोल रही हूँ दिल्ली से।
2: जी पूनम जी, आप हाउसवाइफ हैं?
3: जी
2: आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं?
3: मेरे दो बेटे पति।
2: जी पूनम जी, जब पर्व त्योहार कोई आते हैं तो हमारे भारतीय समाज में बहुत उत्साह हो जाता है और हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, और खासकर हम महिलाएं तो सजने संवरने पे बहुत ही ध्यान देते हैं. परिधान के
3: जी
2: बारे में तो हम बहुत जागरूक रहते हैं. तो आजकल कुछ
3: जी
2: ट्रेंड बदल सा गया है, लोग रंगों में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कपड़ों में एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो आप जब कोई परंपरागत पर्व त्योहार हमारे पड़ते हैं तो आप क्या पहनना ज्यादा पसंद करती हैं?
3: ज्यादा तो अच्छा साड़ी लगता है, लेकिन कंफर्टेबल आजकल सूट में रहते हैं।
2: जी नहीं, डेली डेली वेयर तो ठीक है, लेकिन जब कोई पर्व त्योहार जैसे आपने दुर्गा पूजा देखने जा रही हैं या दीपावली का पर्व है, तो आपको क्या लगता
3: हाँ
2: है कि आपकी खूबसूरती किस परिधान में ज्यादा दिखेगी
3: साड़ी में
2: और क्या क्या तैयारियां
3: जी।
2: करती हैं? त्योहारों को लेके आपके मन में क्या उत्साह रहता है?
3: अब हर त्योहार का अपना एक
2: जी
3: महत्व
2: बिल्कुल.
3: है, रक्षाबंधन है तो भाई बहन का त्योहार है, मिठाई और राखी ये सब इम्पोर्टेंट होता है। दिवाली है तो उसमें दीपक है, फूल है, माला है, तो
2: जी
3: लक्ष्मी गणेश जी की पूजा है, ये सब चीजों का महत्व होता है। और होली है तो उनमें रंगों रंगों का ज्यादा महत्व होता है, तो
2: जी बिल्कुल. और जब दीपावली
3: हर
2: आती है तो घर से लेके, मतलब खुद से लेके, घर से लेके, हर एक चीज को हम चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा सा कर दें, है ना?
3: साफ सुथरा हो,
2: जी
3: सजाई सजी हो,
2: जी
3: नीट एंड क्लीन हो। हम 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। हमारा भारतीय ट्रेडिशन है कि हर त्योहार में हम
2: जी
3: साफ सफाई रखते हैं।
2: बिल्कुल. बहुत साफ सुथरे तरीके से अपने घर को रखते हैं और बहुत सुंदर, जो भी हमारे दिमाग में आइडिया हो सजाते भी हैं. और खुद के सजने संवरने पे आप कितना ध्यान देती हैं पूनम जी?
3: ज्यादातर साज सज्जा में तो ज्यादा तीज और करवा चौथ पे ही हो पाता है, बाकी तो नॉर्मली तैयार होते हैं बच्चे हैं तो।
2: और रंगों में आपको क्या लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है, कि कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ग्रे कलर पहनना है, ब्लैक कलर पहनना है, ये मॉडर्न ट्रेंड है, तो आपको क्या लगता है कि मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए या जो हमारे परंपरागत रंग है जैसे लाल पीला, जो त्योहारों की शुभता को दर्शाते हैं, ऐसे रंगों का प्रयोग ज्यादा उचित होगा?
3: हम तो परंपरा वाले ही लोग हैं तो हमें तो परंपरा वाली चीजें ही सही लगती हैं।
2: जी बिल्कुल पूनम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही. और हमारे जो भारतीय संस्कृति का मूल है वो भी परंपरागत स्वरूप में ही है. पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. कॉल करने के लिए धन्यवाद.
3: धन्यवाद आपका भी।
0: हाँ हेलो सखी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में. आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताएं.
4: मैं स्नेहा बोल रही हूँ,
0: अच्छा स्नेहा जी, आप कहाँ रहती हैं?
4: राजमंदिर एरिया में, मछुदरी के पास।
0: अच्छा, मछूदरी के पास. तो
4: जी
0: उधर तो थोड़ा रास्ता सकरा है, आपको आने जाने में थोड़ी दिक्कत तो नहीं होती है?
4: नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं होती हम लोग को,
0: अच्छा
3: रोज की
0: रहते
3: आदत हो
0: रहते.
3: चुकी है।
0: हाँ हाँ
3: यही कमाई का यही का ससुराल है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती हम लोगों को, आदत
0: अच्छा अच्छा
3: है बचपन से।
0: और आप कहाँ पर, मतलब कहीं जॉब भी करती हैं या हाउसवाइफ हैं? हेलो.
3: होम मेकर हूँ मैम,
0: अच्छा
3: होम
0: अच्छा
3: मेकर हूँ मैं।
0: होम
3: हाँ
0: मेकर है. तो घर में आपके
3: होम
0: कौन
3: मेकर
0: कौन
3: से
0: है,
3: पढ़ाती थी।
0: कौन कौन है घर में आपके?
3: एक बेटा है मेरा, पति है, सासू माँ है,
0: अच्छा.
3: ज्वाइंट फैमिली है हमारी। हाँ सब साथ में ही रहते हैं।
0: तो ये बताइए कि जो भी हमारे पर्व त्योहार हैं वो आप किस तरह से मनाती हैं? अच्छे
3: हाँ
0: लगते हैं
3: हाँ
0: आपको?
3: अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे लगते हैं, पर्व त्योहार मनाने उसको सेलिब्रेट करना किसे नहीं अच्छा लगता है।
0: तो नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में आप कहीं गरबा खेलने, डांडिया खेलने जाती हैं?
3: हाँ,
0: अच्छा.
3: संस्था में हमारे यहाँ की महाराष्ट्र संस्था जो है वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं विविध प्रकार के, वहाँ हम लोग जाते हैं पार्टिसिपेट करते हैं।

0: और अभी फिलहाल तो गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है,
1: हाँ
0: ज्येष्ठा कनिष्ठा गौरी आगमन कल हमारे यहाँ हुआ है, तो उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: 16 तरीके के पकवान बनते हैं हमारे यहाँ पे, और पारंपरिक पोशाक हम लोग पहनते हैं, 9 गज की साड़ी, नथ, ये सभी चीजें कैरी करते हैं, अच्छे से
1: अच्छा
0: रेडी होके आगमन करते हैं गौरी का। फिर सुहागिन आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उनका जेवन कराया जाता है, नैवेद्य दिखा के भगवान
1: अच्छा,
0: को।
1: तो आपके घर में जो और भी महिलाएं हैं और भी बच्चे हैं, वो सभी इस पर्व त्योहार को अच्छे से मनाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं?
0: हाँ, सभी सहभागी होते हैं इसमें।
1: अच्छा
0: मराठी
1: अच्छा
0: जो हमारे पोशाक है, परंपरा जो है, वो सब हम लोग करते हैं।
1: तो ये सारी चीजें कभी कभी करने में बहुत मतलब हड़बड़ी भी होती है ना, कि कितनी जल्दी हम अच्छे से अपनी चीजों को कर लें, तैयार कर लें, तो आप इसके लिए क्या पहले से तैयारी करती हैं?
0: हाँ, ये सब चीजों की प्रिपरेशन तो पहले से करनी पड़ती है, शॉपिंग करनी पड़ती है कुछ दिन पहले से, हम लोग यहाँ जो माला फूल और भी तैयारियां जिस तरीके से होती हैं, सभी चीज
1: हाँ
0: करना ही पड़ता है अरेंज पहले से। हाँ
1: अच्छा, घर सजाना होता है।
0: हाँ सजावट है, रंगोली है, बहुत
1: हाँ
0: सारी चीजें करनी होती हैं महालक्ष्मी
1: हाँ
0: आगमन के लिए। तो
1: अच्छा,
0: अभी हमारे यहाँ पे गणपति का कोई अगर आप सॉन्ग प्ले करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: ठीक है नेहा जी, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, थैंक यू।

0: नमस्कार सखी, कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बोल रही हूँ दीप्ति सिंह, बनारस से।
0: जी दीप्ति सिंह, बनारस में कहाँ रहती हैं आप?
1: बनारस में मैं रहती हूँ, खुजमा बाजार, गांधी चौक।
0: जी दीप्ति जी, अभी तीज का पर्व बीता है, तो तीज पर्व क्या खास रहा इस बार आपके लिए?
1: तीज में तो होता है कि माता गौरी और शंकर जी का पूजन बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से होती है। उसमें फुलेरा जो बहुत ही महत्व होता है बनाया जाता है,
0: जी
1: और साड़ी सुंदर सुंदर भाई सब लेडीजे रेड एंड ग्रीन कलर की साड़ियां सब पहनती हैं, पूरा 16 श्रृंगार करती हैं।
0: जी
1: मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, हम लेडीजों के लिए बहुत स्पेशल दिन होता है वो।
0: काफी पहले से तैयारी होती होगी ना कि कौन सी साड़ी
1: हाँ
0: पहननी है,
1: हाँ
0: कैसे?
1: एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है।
0: जी बिल्कुल। और अब तो त्योहारों का सिलसिला सा चल पड़ा है, जैसे कि तीज भी थी, अब
1: हाँ एक के बाद अब तो सब
0: हाँ
1: आएगा।
0: पितृपक्ष आएंगे, फिर नवरात्रि आएगी,
1: हाँ
0: तो नवरात्रि के लिए क्या स्पेशल करती हैं आप?
1: नवरात्रि में क्या है कि मतलब हम लोग 9 दिन माता रानी का पूजा पाठ करते हैं।
0: जी
1: उसमें भी होता है कि 9 दिन हम लोग अलग अलग ड्रेस कलरफुल पहनते हैं,
0: जी
1: जो मतलब विशेष वो होते हैं कलर, उसका मतलब थोड़ा ध्यान रखते हुए, और 9 दिन पूजा पाठ करना, और उसमें 9 देवियों का पूजन पाठ होता है कन्याओं का।
0: जी और जो भारतीय परिधान है, जैसे कि साड़ी है, लहंगा है, सूट है, अब तो बहुत कुछ पहनते हैं, लेकिन भारतीय तीन ही परिधान मेन होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब कोई परंपरागत त्योहार होता है तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और आपका पसंदीदा क्या है?
1: मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि अपना मतलब ये जो साड़ी है, लहंगा है, सूट है, ये काफी अच्छे होते हैं।
0: जी
1: और मतलब साड़ी और जो लहंगे में जो एक लुक आती है वो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और दुर्गा पूजा में घूमने जाती हैं आप
1: हाँ
0: पंडाल
1: हाँ
0: देवी
1: हाँ
0: दर्शन के लिए?
1: हाँ हाँ जाते हैं, हमारे यहाँ तो बनारस में बहुत सुंदर सुंदर पंडाल लगते हैं।
0: और जब दीपावली की बात हो तो सबसे पहले अगर कुछ याद आता है तो वो याद आता है कि कोई भी कोना छूटे ना और सफाई बस कर दो, तो
1: हाँ
0: आप
1: हाँ तो है, वो तो है, उसमें तो पूरा एकदम सब मतलब बहुत ही बहुत ज्यादा लोग लग जाते हैं साफ सफाई में एकदम से।
0: जी तो आप भी अपने घर का कोना कोना अच्छे से चमकाती हैं
1: बिल्कुल
0: ना?
1: होता है, सच में होता है, कहीं कुछ छूट न जाए, पूरी सफाई हो जाए, एक पॉजिटिव मतलब वाइब्स घर में बने, जब पूजा हो
0: जी
1: कहीं से कुछ भी मतलब छूटे ना, मिसिंग ना हो, ऐसा लगता है।
0: जी
1: तो
0: और
1: जोरों
0: त्योहार
1: शोर से वो सफाई 15 दिन 20 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है।
0: हो और खाने पीने की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है,
1: वो तो
0: तो
1: खाने पीने के बिना तो त्योहार अधूरा है।
0: अधूरा है। लेकिन आजकल क्या है कि उसमें भी बाजारीकरण दिखता है कि लोग सोचते हैं अरे कौन इतनी मेहनत करे और
1: हाँ
0: बाजार
1: ये
0: से
1: तो
0: कुछ
1: है,
0: ना कुछ,
1: आजकल ऐसा ही हो गया, कोई मेहनत नहीं करना
0: हाँ
1: चाहता, सब
0: ऑनलाइन
1: रेडीमेड
0: मंगा लेते
1: जाते हैं।
0: हैं या फिर वैसे। तो आप किस तरह से अपने मेहमानों का स्वागत करती हैं त्योहारों में?
1: हमारे यहाँ तो होता है कि मतलब हम घर में अपने हाथ से बनाओ, जो
0: जी
1: अपने हाथ का प्यार उसमें जाता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक
0: सही कहा
1: मतलब वो
0: आपने।
1: होता है, मतलब खुशी होती है बनाने में।

0: जो एनर्जी उसके प्रति वो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब हमारे यहाँ होता है कि अपने हाथ से बनाना, थोड़ा उसमें टाइम लगाना, तो ऐसा लगता है कि फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ फेस्टिवल है वो ज्यादा अच्छा लगता है।
1: जी
0: हम
1: बिल्कुल।
0: अपने ही मार्केट से लेके चली आई तो वो थोड़ा अलग होता है। तो
1: हाँ, अगर कोई बहुत व्यस्तता है, कोई विशेष कारण है तो बात अलग है,
0: हाँ वो
1: वरना
0: बात
1: हाँ,
0: अलग है।
1: वरना अपने
0: हाँ
1: घर की सफाई हो या फिर खाने की बात हो, तो जो बात
0: हाँ तो
1: अपने
0: घर
1: हाथ
0: में
1: में
0: बहुत
1: होती
0: ज्यादा
1: है।
0: अच्छा होता
1: हाँ
0: है।
1: दीप्ति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप कन्वर्सेशन करके बहुत ही अच्छा लगा जी।
1: जी फिर से एक बार
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद। हेलो सखी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
2: जी मैं संध्या बोल रही हूँ,
1: जी
2: गदौलिया से।
1: संध्या जी, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं या फिर आप जॉब करती हैं?
2: नहीं मैम, मैं खुद का अपना बिजनेस करती हूँ
1: बिजनेस करती हैं और घर भी संभालती हैं।
2: जी।
1: संध्या जी, जब त्योहारों की बात होती है तो मन बहुत उत्साह से भर जाता है, और भारतीय जो तीज त्योहार होते हैं उनकी तो तैयारी बहुत पहले से ही लोग करने लगते हैं। तो जैसे कि अभी तीज का पर्व बीता, तो तीज का पर्व क्या खास था इस बार आपके लिए?
2: स्पेशल मैम ये था कि तीज का व्रत करते हैं
1: जी
2: और पारंपरिक तरीके से जो होता है हम लोग में भाई वो करता है हम लोग
1: जी तो संध्या जी, जब त्योहारों की बात होती है, आजकल तो लोग कपड़े के नाम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब त्योहारों की बात होती है तो आपको क्या पसंद आता है, कि आपको क्या लगता है कि क्या आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा? किस तरह का परिधान पहनना पसंद करती हैं आप?
2: मैं जैसा मैम ओकेजन होता है उसी हिसाब से परिधान को वियर करना पसंद करती हूँ।
1: आपको परंपरागत परिधानों में जैसे साड़ी है, लहंगा है, सूट है, आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है?
2: मैम तीनों ही लगभग मुझे पसंद है, साड़ी सूट लहंगा, जैसा ओकेजन होता है उस हिसाब से वेयर करती हूँ।
1: जी, और संध्या जी, जब नवरात्रि का पर्व आता है तो बहुत सारी, जैसे कि पंडाल देखना है, डांडिया खेलना है, बहुत सारी तैयारी, पूजन घर में होता है, आप किस तरह से नवरात्रि को सेलिब्रेट करती हैं?
2: जी मैम सबसे पहले मैम 3 दिन हम घूमते
1: जी
2: हैं जब के, और डांडिया भी मुझे बहुत पसंद है। डांडिया में मुझे लहंगा पहनना बहुत पसंद है
1: जी
2: और दुर्गा पूजा भी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे बेसिकली पारंपरिक ड्रेस ही अच्छा लगता है त्योहारों में
1: जी और संध्या जी, जब दीपावली की बात होती है तो घर की साफ सफाई सबसे टॉप पे होती है।
2: जी।
1: आजकल सब लोग क्या होता है कि मार्केट से मंगा लेते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो जब इस तरह के परंपरागत त्योहार होते हैं जिसमें घर में बाहर के लोग आए, हमारे दोस्त मित्र हमसे मिलने आते हैं, तो आप उस
2: जी
1: त्योहार को कैसे सेलिब्रेट करती हैं और किस तरह से अपने मेहमानों का स्वागत करती हैं?
2: मैम ज्यादा तो हम लोग भी बाहर का ही सामान मंगवाते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो है घर में बजाना पसंद करते हैं, जैसे गुजिया हुआ
1: जी,
2: और पापड़ है, चिप्स है, ये सब अपने मेहमानों के लिए बनाना पसंद करते हैं।
1: और साफ सफाई पे तो ध्यान रहता ही रहता होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि वो तो साल भर की होती है सफाई, तो वो तो उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है मैम।
1: बिल्कुल।
2: बिल्कुल
1: और त्योहारों पे संध्या जी, खुद को कितना सजाना पसंद करती हैं आप?
2: मैं तो जैसा मैम ओकेजन होता है उसी हिसाब से तैयार होती हूँ
1: यानी कि आपको अच्छे से सजना संवरना भी बहुत पसंद है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो संध्या जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
3: मंजरी, सखियों से बात करके तो अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें हमने उनसे जानी। और देखा जाए तो अधिकतर सखियों ने साड़ी लहंगा, मतलब हमारे जो पारंपरिक परिधान है उसी पर ज्यादा जोर दिया है ना।
1: बिल्कुल कंचन जी, जब बात पर्व त्योहार की हो और जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, तो उसमें तो ट्रेडिशनल चीजों का ही महत्व होना भी चाहिए। और हमारी सखियों ने भी वही बताया कि उन सभी को वही चीजें पसंद है जो हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, चाहे वो खाने पीने में हो, यानी कि घर के खाने की बात भी उन्होंने कही, पारंपरिक परिधानों की बात की, साफ सफाई, सब कुछ वैसा ही जैसा कि हमारी संस्कृति में कहा गया है। तो बहुत अच्छा लगा। और अभी हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है कंचन जी,
3: हाँ
1: तो हम सब हिंदी भाषी हैं और हम सभी को हिंदी का प्रयोग बहुत गर्व के साथ में करना चाहिए, क्योंकि आजकल अंग्रेजी इतनी ज्यादा आ गई है लोगों पर। अंग्रेजियत मतलब कि इंग्लिश या किसी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके किसी भाषा पे बहुत प्रकाश डालना, बहुत फोकस करना, ये गलत होता है। तो सखियों, जितनी भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, उतना दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा पे गर्व करें और हिंदी का प्रयोग करें।
3: और इसके साथ ही मंजरी जी, स्वच्छता पखवाड़ा भी तो चल रहा है ना।
1: बिल्कुल
3: हम कुछ भी करते हैं अपने घर में, साफ सफाई तो सबसे पहले करते हैं। तो साफ सफाई सिर्फ घर में नहीं, घर के बाहर भी। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो वहां पर भी आपके द्वारा कोई गंदगी ना हो, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पर्व त्योहार या कुछ भी हो, आप घर में जिस तरह से साफ सफाई अपने दायित्व के साथ करते हैं, वैसे

0: आप कहीं पर भी हैं, अगर कोई ये कर भी रहा है, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो आप उसे बता सकते हैं कि इसे आप उठा के डस्टबिन में डालिए या इसका ध्यान रखिए, है ना।
1: कंचन जी, मैंने देखा है ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी बहुत सारी सखियां क्या होती है, अपने घर की सफाई करती हैं और कचरा आगे बढ़ा देती हैं, पर जाएंगी कहाँ से। इसलिए पूरी सफाई करें सखियों, और अपने आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान दें। और अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी सखी मंजरी,
0: और कंचन को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ, सखियों के बाद, सखियों के जज्बात, गृहलक्ष्मी।
3: महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर उपलब्ध हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कार्यक्रम में कलाकार हैं खरपत राम और उनके साथी। पहले सुनते हैं इनका गाया एक कहरवा।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिडडे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indo-Debutants followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin DY in Group A, Match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HDT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Gadchandur in Maharashtra. Security forces killed 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और एचटीटी-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टैग बॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यासुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HAT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HAT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
1: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस HAT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और TV शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में।

0: कल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी

0: आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में मैं स्तुति आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की तारीख सिनेमा की उस अदाकारा के नाम जिन्होंने अभिनय को सिर्फ पर्दे पर निभाया नहीं बल्कि उसे महसूस कराया। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री जिनके लिए किरदार सिर्फ संवाद बोलने का नाम नहीं था। कभी एक ग्रामीण महिला की चुप्पी, कभी एक पत्नी का टूटता हुआ विश्वास, कभी एक माँ की चिंता, कभी समाज से लड़ती हुई एक स्त्री, और कभी ऐसा किरदार जिसे निभाना अपने आप में एक चुनौती था। हर बार चेहरा वही रहा, लेकिन किरदार बदलते ही उस चेहरे पर भावनाओं की पूरी दुनिया बदल गई। आज 18 सितंबर है और आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की बेहद सम्मानित अभिनेत्री शबाना आजमी का। तो आज के हमारे विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में पूरा सफर एक ही कलाकार के नाम शबाना आजमी।

हांजी, तो आपको बता दें कि शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता थे मशहूर शायर कैफी आजमी और माँ थी जानी मानी थिएटर कलाकार शौकत आजमी। यानी साहित्य और रंगमंच का वातावरण उनके बचपन से ही उनके आसपास था, लेकिन अभिनय को पेशे के रूप में चुनने का सफर अपने आप में दिलचस्प रहा। जी हाँ, शबाना आजमी ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे से अभिनय की शिक्षा ली और 1971 की एक्टिंग बैच का हिस्सा रही। FTII आज भी उन्हें अपनी प्रमुख एलुमनाई में शामिल करता है। और फिर आया साल 1974, एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा में एक नई अभिनेत्री का परिचय कराया और आगे चलकर भारतीय समानांतर सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर से उनका नाम जोड़ दिया। फिल्म थी अंकुर, निर्देशक थे श्याम बेनेगल और शबाना आजमी ने निभाया था लक्ष्मी का किरदार। अंकुर में शबाना आजमी का अभिनय बहुत सहज था। उनके अभिनय में बहुत कुछ ऐसा था जो संवादों से नहीं बल्कि आंखों और चेहरों के भाव से व्यक्त होता है और यही उनकी अभिनय शैली की खास पहचान बनने लगी। अंकुर के लिए शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यानी करियर की शुरुआत ही एक बड़े राष्ट्रीय सम्मान से, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे किरदार निभाए जिनमें चमक दमक से ज्यादा जिंदगी की सच्चाई दिखाई देती थी।